सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3 FM.

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है.

0: हे बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है
0: बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है
0: बाकी सब ठीक है ना
1: बस चल रहा है भाई
0: व्हाट अबाउट यू
1: हाँ चल रहा है
0: बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है
0: बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है
0: बाकी सब ठीक है ना
1: हाँ ठीक है
0: और तेरा
1: बस चल

0: तो डायट चल रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: तेरा भी बोलना
0: मेरा भी चल रहा है। व्हाट अबाउट यू?
1: हाय लिख के दूं क्या?

0: रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: तेरा भी बोलना
0: मेरा भी चल रहा है, व्हाट अबाउट यू?
1: हाय, लिख के दूं क्या?
2: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
3: awesome।

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग हर जी तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओनली 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

हंसी तो फंसी मूवी से ब्यूटीफुल ट्रैक जहन नसीब बोलिए ऑन रेडियो 106.3 FM दरीश आ गया जी आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स लेकर अ वेरी गुड मॉर्निंग मेरी जान. बिल्कुल ऐसे ही शुरुआत करनी है हर दिन की हमें, ठीक है. हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, सिंपल एज दैट. कैसे हैं, क्या हालचाल है, वीकेंड कैसा रहा आपका? मेरा बढ़िया था, थोड़ा सा ऐसे कोल्ड कैच कर लिया है, पर ये आता जाता रहता है, मतलब इट इज़ नॉट कंसिस्टेंट एक दिन में भी. आई एम सेइंग पता नहीं, इट्स समथिंग वियर्ड. ओके, लेट्स सी क्या होता है उसका. तो बाकी आप मुझे बताइए कैसे हैं, कैसा रहा आपका वीकेंड, अभी क्या कर रहे हैं? अभी वक्त काम के लिए निकल चुके हैं, निकलने वाले हैं, रेडी हो रहे हैं, बच्चों को रेडी कर रहे हैं स्कूल के लिए. व्हाट्स हैपनिंग? 3311 1063 पर मैसेज कीजिए मुझे और बताइए.

और आज रेट्रो में जो मैं लेकर आई हूँ, होए रिलेट करेंगे इस गाने से। ये सभी गाने इस घंटे में आपके लिए प्ले करने वाली हूँ और ढेर सारी बातें भी करनी है, लेकिन सबसे पहले आपके हालचाल जानने हैं। गुड मॉर्निंग चाहिए आपसे प्यारी सी, आ जाओ फटाफट से 3311 1063 पर और सुनते रहिए रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास मेरी जान।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: From vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट prices पर सिर्फ Nesto Hypermarket में groceries हो fresh food हो या daily essentials सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी profitable Nesto Hypermarket 152nd branch now opened in old passport office Algarafa Nesto
2: all that you need Hi मैं हूं विवेक आनंद ओबेरॉय You're listening to Radio Olive. Jio Bindas. I'm in number
3: one. Radio Olive. Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
4: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे निशा को बिंदास मॉर्निंग में.
5: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning Malabar Gold and Diamonds The Responsible Jeweler Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath jahan milti hai complete transparency aur bharosa
6: Commercial Bank Your future grows when your savings grows Save more dream bigger Win up to 5 million riyals with Commercial Bank In association with Naseem Healthcare No queues no hassle Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations Download it today

0: अरिजीत सिंह की आवाज में जमाना लगे का एक और खूबसूरत रेंडिशन फ्रॉम द मूवी मेट्रो इन द नो ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर और मैसेजेस का सिलसिला शुरू करते हैं। सो मुझे नाजनी जी का मैसेज आया है, कहती है गुड मॉर्निंग, Be thankful for all the rude, obnoxious and difficult people you meet in life. They serve as important reminders of how not to live. Exactly. Along with that, they also make you aware of the things जो आप tolerate नहीं करना चाहते अपनी life में. जी हाँ, ऐसे लोगों से बात करके आपको पता चलता है कि this behavior is not okay with me. I am not going to take it. So next time जब आपको थोड़ी सी भी hint मिलेगी आप खुद ही पीछे हो जाओगे. So it is also really important. Yes, संतोष जी का message है, Good morning friends, rise and shine everyone. Wishing you all a day filled with boundless positivity, endless opportunities and a sprinkle of magic. Love you all and God bless you, Jio Bindas. That is so sweet. Thank you so much, Sandhu ji. And Shashikant Patil ji ka bhi message aaya hai mujhe. और वो कहते हैं, एक बड़ा प्यारा सा कोड भेजा है उन्होंने, हैप्पीनेस इज द एबिलिटी टू मूव फॉरवर्ड नोइंग फ्यूचर विल बी बेटर देन द पास्ट. इंडीड, ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर दैट, नेवर स्टे स्टक इन द पास्ट, बिकॉज वो तो चला गया ना, उसका तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, तो हो गया सो हो गया. अब आगे क्या होना है उसमें थोड़ा बहुत एफर्ट डाल के आप उसे बेहतर जरूर बना सकते हो. सो ऑलवेज फोकस ऑन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर अ लिटिल बिट, ज्यादा फोकस भी नहीं करना है वरना प्रेजेंट जियोगे कैसे. ठीक है, एंड जुल्फी जी का मैसेज है हमें यहाँ पर, कहते हैं अ ग्रेट रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल्स, फर्स्ट इज टू अप्रिशिएट आर सिमिलैरिटीज एंड सेकेंड इज टू रिस्पेक्ट आर डिफरेंसेस. यस, बहुत बहुत जरूरी चीज है ये. और दीपक जी ने अपना नाम भेजा है मुझे, गुड मॉर्निंग दीपक जी, आई होप यू आर हैविंग एन अमेजिंग मॉर्निंग. बाकी मैं अपने गानों से तो क्रेजी बना ही रही हूँ, फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द आवर भेज रही हूँ आपके लिए. सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास. ओसम रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
1: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है ओसम.

0: Ready?
1: Ready!
0: To learn!
1: Yes!
0: To play!
1: Absolutely!
0: To grow!
1: With Maserati!
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
1: मिल्क चीज योगर्ट लवली एग्स
2: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस

उदित नारायण साहब की आवाज में वीर ज़ारा मूवी से मैं यहाँ हूँ। बिल्कुल मैं यहाँ हूँ आपके साथ सुबह सुबह आपकी गुड वाली मॉर्निंग में। बढ़िया बढ़िया गाने चला रही हो और अभी तो यही बहुत कमाल बात करने वाली हो। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 FM, त्रिशा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर। और गौर से सुनिएगा और इसे लागू कीजिए अपने ऊपर, ठीक है। बाकी बिलाल जी का गुड मॉर्निंग आया। गुड मॉर्निंग जी। सो यू आर लाइक द सजरा सवेरा पार्ट इन कुन फाया कुन। You remember the track Kun Faya Kun? उसमें जो खूबसूरत वो lines हैं सजरा सवेरा वाली, आप उसकी तरह हो यार। Do not let anybody treat you like love story या in Kesariya। कितना crazy हो गया था जब वो गाना ऐसे teaser आया था Kesariya का, and people heard कि उन्होंने Kesariya से rhyme करने के लिए love story या word बना दिया है। This doesn't exist and काफी मुश्किल था लोगों के लिए वो digest करना, but then you know इट्स अरिजीत सिंह, कम ऑन, वो अपना मैजिक हर गाने में चला देते हैं। बट स्टिल सजरा सवेरा वाले पार्ट की बात अलग है। सो ट्रीट योर सेल्फ लाइक दैट, डू नॉट लेट एनी बडी एल्स ट्रीट यू एनी लेस, ठीक है। आप इंपॉर्टेंट हैं, ये बात आपने कभी नहीं भूलनी। यू नो व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल यार, तो किसी के कुछ बोलने से या किसी के यू नो सही तरीके से आपसे बात ना करने से अपने आप को कम समझना नॉट ओके एट ऑल। समझ रहे हो ना बात को? हाँ जी। सनी का ब्यूटीफुल ट्रैक सोनू निगम की आवाज में स्ट्राइक मूवी से चम चम। स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास।

0: Hi, मैं हूँ सोहा अली खान एंड यू आर लिस्निंग टू रेडियो ओलिव जियो बिंदास.
1: Olive Sono Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

0: तनिषा
1: तनिषा कैलाश खेर साहब की आवाज में बड़ा ही खूबसूरत गाना सैया ओनली ऑन रेडियो अलब 106.3 एफएम। तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर और वक्त हो चुका है रेडियो अलब प्रेजेंट्स ब्लैकबोर्ड स्टोरीज। सो आज का सवाल है व्हाट हैज अ हेड एंड अ टेल बट नो बॉडी। What is that thing जिसका हेड भी है और टेल भी है पर कोई बॉडी नहीं है, क्या है वो बताएं मुझे 3311106 3 पर 3311106 3 पर और यू कैन कॉल 4444106 3 पर। What has a head and a tail but no body? What am I? Tell me। मैसेज का इंतजार कर रही हूँ मैं आपके और भेज रही हूँ फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर फॉर यू। Stay tuned on Jio Bindaas मेरी जान।
0: Radio Olive Bar. Fresh song of the hour. Yeah, gonna.

0: हर जीत तमीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

पर इस सीरीज का एक सीजन काफी नहीं है. आई एम ईगरली वेटिंग फॉर यू नो सीजन टू ऑफ मुसाफिर कैफे. और अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है अभी तक, देख लो यार, बड़ा ही प्यारा है. यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम. तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. रेडियो ऑलिव प्रेजेंट्स ब्लैक बोर्ड स्टोरीज. तो ब्लैकबोर्ड स्टोरीज का आज का मेरा सवाल था, व्हाट हैज अ हेड एंड अ टेल बट नो बॉडी. एंड आई हैव गॉट द आंसर्स ओवर हियर. यस, द करेक्ट आंसर इज कॉइन. सो डॉक्टर अब्दुल कादिर, सॉरी. एंड देन देयर इज रवि फारूक का मैसेज आया है मुझे अलोंग विद दैट. अनदर अब्दुल इज देयर. ऐश का मैसेज आया है. श्रेया इज देयर. शहाना इज देयर. और किसी ने सिर्फ डी लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा है. एंड किसी ने सिर्फ और सिर्फ इमोजीज बनाए. अकाय का मैसेज आया. अकाय कोहली इज इट. वाओ, एवरीबॉडी हु हैज आंसर, थैंक यू सो मच मेरी जान फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस. अभी मैं सुनाती हूँ आपको इस घंटे में जो कमाल के गाने चलने वाले हैं.

0: I don't know how many times I can watch this movie, but so far तो मैं कुछ ऐसे 10, 8 or 9 चलो थोड़ा ऐसे लॉजिकल नंबर लेते हैं तो 8 or 9 टाइम्स मैं देख चुकी हूँ एंड आई एम नॉट बोर्ड येट.
1: मैं तनु समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी.
0: When I was little, स्कूल में ना एक शो आता था, माय मदर यूज टू वॉच इट, और उसमें इसका ओरिजिनल जो पंजाबी ट्रैक है राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में वो गाना आया था. वहां से मैंने इस गाने को डिस्कवर किया था एंड आई फेल इन लव विद दिस वन. और अरिजीत सिंह का वर्जन है तो देखो कमाल तो हो गए.
1: भीगी भीगी सी है रातें, भीगी भीगी यादें, भीगी भीगी बातें, भीगी भीगी आंखों में कैसी नमी है.
0: जेम्स की आवाज में भीगी भीगी एंड देन आपका क्या होगा जनाबे अली,
2: आपका क्या होगा जनाबे अली, आपका क्या होगा.
0: आई वुड से वही होगा जो मंजूर खुदा होगा और वो हमेशा बेहतर ही होता है ना. सेंडिंग वारू फ्रॉम मिर्जापुर द मूवी. जिसने देखी है प्लीज मुझे बताओ, मैंने रिव्यूज तो पढ़े, इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, बट मौका नहीं मिल पाया है कि मैं जाकर देख सकूं. तो अगर आप में से किसी ने देखी है तो जरा आओ और बताओ कैसी लगी. और सुनते रहे रेडियो

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: बिंदास रेडी टू लर्न टू प्ले टू ग्रो
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस
3: Hi, मैं हूँ दिव्या दत्ता and you're listening to Radio Olive Jio Bindas.
0: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
4: सुनिए हर सुबह 6 से 10 हर जिस निशा को बिंदास मॉर्निंग में मॉर्निंग
5: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
6: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: दनिशा
1: करण मोहन और याशिता शर्मा की आवाज में टू स्टेट से ब्यूटीफुल ट्रैक चांदनी ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM. दनिशा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर. Not so much, but you know, in hopes कि ये better होगा तो मैं बर्दाश्त कर पा रही हूँ. वैसे मुझे यहाँ पे गुलाम रसूल जी का गुड मॉर्निंग आया है, लियाकत जी का गुड मॉर्निंग आया है और साथ में मोहम्मद यूसुफ खान साहब का भी गुड मॉर्निंग आया है. अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ईच वन ऑफ यू. आई होप आप सबकी मॉर्निंग एकदम चकाचक जा रही है और बिंदास तो मैं यहाँ पे बनाई रही हूँ. सो वेदर की बात करें तो टेम्परेचर राइट नाउ इज 36 डिग्रीज एंड इट फील्स लाइक 46 डिग्रीज. यार ये क्या है, गलत बात है. इतनी खास तेज हवा है नहीं आज, बट स्टिल आप अपना ख्याल रखें. और ऑल्सो मैं डिपार्टमेंट ने कहा था 5 और 6 को क्लाउड फॉर्मेशन हो सकता है और बारिशें हो सकती है, तो नहीं हुई है. किसी के एरिया में हुई हो तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं जिधर जिधर थी वहाँ तो नहीं हुई है दोस्तों. सो या बाकी मैं वेट कर रही हूँ कि 15 सितंबर आए जल्दी से, क्योंकि ऐसे बोला है ना कि उसके बाद से टेम्परेचर डाउन होना लग जाएगा. It will start getting pleasant. So, you know, कुछ 10 दिन और बचे हैं, इंतजार कर रहे हैं जल्दी से ये बीत जाए और यू नो वो सुहाना वेदर जो है कतर का, ओए होए होए इतना सुंदर. उस वेदर में बैठ के कड़क पीने का जो मजा होता है ना, नेक्स्ट लेवल है. अभी मेरे को कड़क पीनी है तो मैं आती हूँ कुछ देर में, आप गाना एंजॉय करो. संतरे रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

James की आवाज में गैंगस्टर मूवी से बिगी बिगी ब्यूटीफुल ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ऑल ऑफ 106.3 एफएम. तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर. एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन ने रीइटरेट किया है कंप्लीट बैन ऑन स्टूडेंट पनिशमेंट इन गवर्नमेंट स्कूल्स. सो ना कोई फिजिकल पनिशमेंट अलाउड है, ना वर्बल पनिशमेंट और ह्यूमिलिएशन, साइकोलॉजिकल पनिशमेंट या फिर एनी अदर फॉर्म ऑफ यू नो पनिशमेंट दैट कुड हार्म द स्टूडेंट्स इन लॉन्ग टर्म. वो कुछ भी अलाउड नहीं है. अगर कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम है बच्चों में तो आप उसको पॉजिटिवली और यू नो अप्रूव्ड एजुकेशनल मेथड्स, ऑल द टीचर्स नो अबाउट दैट, उस तरह से उसको हैंडल कीजिए. बिकॉज यू नो वो जो फाउंडेशन एज है ना अभी बच्चों की, इस वक्त जो चीज़ें हम उनके दिमाग में डाल देते हैं ना, इट स्टेज फॉर लॉन्ग. आई मीन आई कैन टेल अबाउट माई सेल्फ. सो I was a very shy kid in school. मतलब मैं बात ही नहीं करती थी स्कूल में, मेरे फ्रेंड्स भी नहीं थे, कैन यू बिलीव. एंड आई वॉज नॉट वेरी मच एक्साइटेड टू डू माई होमवर्क, स्पेशली हिंदी का. ओ माई गॉड, आई वॉज सच अ टोर इन दैट. भागती थी मैं उससे. एंड नोटबुक यू नो आपको पूरी कंप्लीट करके रखनी है. नहीं, मैं क्लास में बैठ के ड्रॉइंग कर रही हूँ. वो भी अच्छी नहीं होती थी मेरी, बट स्टिल. एंड देन जब सबमिशन का टाइम आता था, I would either, you know, make some excuse कि मामा मुझे नहीं जाना है. क्यों? क्योंकि टीचर जो थी वो सबके सामने मुझे डांटेंगी. ऑब्वियसली गलती मेरी है कि मैंने कंप्लीट नहीं किया है, यस. बट वहां से जो मुझे मिलता था ना, कभी हैंड राइटिंग पर कुछ ना कुछ बोल रहे हैं और वट एवर द ह्यूमिलिएशन आई वॉज गेटिंग देयर इन द क्लास, उसकी वजह से आई वुड जस्ट रन अवे फ्रॉम इट कि मुझे जाना ही नहीं है इस क्लास में. एंड आई वुड जस्ट मेक सम एक्सक्यूजेज एंड आई वुड नॉट गो. So that still is there engraved in my memory. I realize now कि mistake मेरी थी, तो उसकी वजह से मुझे वो सब झेलना पड़ता था. लेकिन teacher could have been a bit nicer, so I feel. और क्योंकि वो चीज़ अब रह गई है ना दिमाग में, तो उस तरह से काफ़ी सारी relatable situations को मैं deal करती हूँ life में. So I think this is a really good move, क्योंकि प्यार से बात करके समझाओगे ना तो मान लेंगे यार, कितने प्यारे होते हैं बच्चे. आपको ना बस उन्हें वो अटेंशन और उन्हें ये फील कराओ कि यार तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तुम्हें सब पता है. When we start treating them like kids, I think उन्हें तब प्रॉब्लम होती है. This all I am saying because मेरे नेफ्यू के साथ मैं बहुत रही हूँ एंड उसके साथ मैं इस तरह से बिहेव करती हूँ एंड थिंग्स वर्क आउट. बाकी आप लोग ज़्यादा जानते हैं यार, आप लोगों को बेहतर पता है, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसमें. बट या दिस इज़ अ गुड इनिशिएटिव, दैट्स ऑल आई वांट टू से. और सेंडिंग एन अमेजिंग ट्रैक योर वे. स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास. People.

0: टफ काम और भी आसान। कार्नल ग्रुप लाया है शैंटोई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स, मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
0: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. And तस्वीर, which is the Qatar's photography focused platform, उन्होंने लॉन्च कर दिया है second edition of Frame and Focus. Yes, ये जो exhibition है, it will showcase work by 12 emerging photographers. And this program supports new photographers through training, mentorship, critique and experimentation. So, जो photographers हैं इस program में, उन्होंने develop किया है photographic and time-based project exploring personal and contemporary stories through visual storytelling. So, अगर ये आपको excite करता है, if you are a photography enthusiast or you know storytelling में interest है, तो you should go and check it out. So, इस initiative का basic aim ये है कि Qatar में जो photography talent है, उसको और ज़्यादा develop किया जाए. एंड उसको यू नो वाइडर GCC ऑडियंस तक लेकर जाया जाए, सो दैट जो इमर्जिंग आर्टिस्ट हैं उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिले एक्सपेरिमेंट करने की, टू टेक रिस्क इन क्रिएटिव वर्ल्ड. एंड दिस इज सो गुड, जब आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है ना, जिसके थ्रू आप अपनी कला दिखा सकते हैं, यू आर रेडी टू टेक मोर रिस्क, यू आर रेडी टू एनहैंस.

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: From vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं. अब कतर में shopping करें best prices पर. सिर्फ Nesto Hypermarket में. Groceries हो, fresh food हो या daily essentials, सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर. तो अपनी shopping को बनाएं और भी profitable. Nesto Hypermarket, 152nd branch now open in Old Passport Office, Algarafa.

0: बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग आरजे तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओनली 106.3 एफएम जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvatra. For more details, call 500-56123.
1: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह.
2: गुलराज सिंह
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3
2: जियो बिंदास.
0: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
4: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर. नो क्यूज, नो हैसल. जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस. डाउनलोड इट टुडे.

0: Tanisha.
1: सुनिधि चौहान की आवाज में यार बहुत खूबसूरत गाना, बहुत ही ज्यादा सुंदर लिरिक्स तनिषा के साथ सुना आपने रेडियो 106.3 FM पर बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. एंड यार हम सुना है यारी की बात करते हैं. दोस्ती का आजकल फाउंडेशन क्या हो गया है? पहले ये होता था कि यू नो आप अपने दिल की बात कर पा रहे हैं जिस इंसान से और जिसके बस साथ होने से आपको ऐसे लग रहा है कि अरे भाई दुनिया जीत लूंगा यार, कुछ नहीं सब ठीक हो जाएगा. लेकिन अभी फाउंडेशंस थोड़ी सी चेंज हो गई हैं. सो अभी दोस्ती के मेजर का मायना हो गया है मीम्स. जी हाँ, अगर कोई आपसे इंस्टाग्राम पे पूरा दिन रील शेयर कर रहा है वो आपका बेस्ट बडी हो जाता है. जो वियर्डेस्ट और क्रिंजीएस्ट मीम्स आपसे शेयर करे वो तो भाई मतलब जैसे फैमिली वाला जो सीन होता है ना फ्रेंड्स के साथ वैसा है. सो ये मायने इस तरह से बदल रहे हैं. एंड हद तब हो गई जब एक आदमी अपने दोस्त को रील्स भेजे जा रहा था. दोस्त ने ऐसे दो दिन तक रिस्पॉन्ड नहीं किया, रिएक्ट ही नहीं किया रील पे. बाय द वे आई एम ऑल्सो दैट काइंड ऑफ पर्सन. अगर मैं शुरू हो गई हूँ तो मैं ऐसे 10-12 रील्स एक साथ भेज दूंगी और मुझे हर एक पे रिएक्शन चाहिए. आप कभी भी देखो. सो माई फ्रेंड्स आर अ बिट अनॉयड विद मी फॉर दैट. सो या दैट मैन, उसने दो दिन तक रील्स भेजी और दोस्त रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, कोई मैसेज का जवाब नहीं दे रहा है. वो घबरा गया, उसने कंप्लेंट कर दिया यार पुलिस में कि मेरा दोस्त खो गया है, मिसिंग है वो, उसने दो दिन से इंस्टाग्राम नहीं चलाया. कैन यू इमेजिन? हाँ जी, कुछ देर में आने वाला दिलेर मेहंदी साहब की आवाज में बोलो तारा रारा.
2: रंग रस मरे,
1: वडाली ब्रदर्स की आवाज में ये खूबसूरत गाना.
3: हाँ, हाँ,

0: ready?
1: Ready!
0: To learn!
1: Yes!
0: To play!
1: Absolutely!
0: To grow!
1: With Maserati!
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
1: मिल्क चीज योगर्ट लग्नी एग्स
2: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए वो

Sanu Edzman was a beautiful track, Rungraze, only on Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, aapke saath bindaas mornings chal rahe hain yahan par. And this one is specially for all the HRs, the bosses, the owners of the company. I'm talking to you guys right now. Theek hai, zara dhyan se suno. So, your employees are working really hard for you, right? Or you appreciate the work, you're grateful for all the work they are doing. And jab bahut zyada aise life monotonous ho jati hai na, kaam, ghar, kaam, bas yahi chal raha hota hai, to ek break ki zarurat hoti hai. And they might come and ask you for a break anytime, right? So instead of giving them break ki bahar jao office se, kyun na break ko office mein le aao? जी हाँ, रेडियो ऑलिव की टीम रेडी बैठी है आपके ऑफिस में वो ब्रेक लेकर आने के लिए हैप्पीनेस लाउंज के साथ. सो वी हैव बीन टू अ फ्यू कॉर्पोरेट्स ओवर हियर और यू नो बहुत सारी फन मस्ती गेम्स खेले, इंटरैक्टिव सेशंस हुए वहाँ पे पूरी टीम के साथ और आइस ब्रेकर सेशंस विद देयर टीम बिल्डिंग सेशंस एंड इट वाज रियली अमेजिंग. सबने बहुत एंजॉय किया एंड वी वांट टू ब्रिंग दैट फन, दैट एंजॉयमेंट, दैट एनर्जी टू योर ऑफिस नाउ. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं टू इन्वाइट रेडियो ऑलिव का टीम टू योर ऑफिस टू ऑर्गेनाइज हैप्पीनेस लाउंज, 3311-1063 is the number because your hardworking employees need a break aur us break ke liye unhe bahar jane ki zarurat nahi hai. You and us can bring the break to them in your office only. Simple hai na yaar. Aur jab wo ekdam se aise refresh ho jayenge, unhe thoda sa time out milega, uske baad unka focus, dedication aur productivity aur zyada badh jayega. फुल प्रूफ प्लान है यार, तो ज्यादा सोचो मत, मैसेज कर दो फटाफट से 3311-1063 पर एंड वी विल कम टू योर ऑफिस टू हैव एन अमेजिंग टाइम विद योर एम्प्लॉयज. अभी मैं भेज रही हूँ एक बहुत प्यारा गाना, तारे बाय फरक, और इंस्टाग्राम पे काफी सुना होगा, सुनोगे तो याद आ जाएगा. स्टे ट्यून्ड.

के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।

0: टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ। सुनिए हर सुबह 6 से 10 आर जे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
0: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर। नो क्यूज, नो हैसल। जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

Tanisha. Tanisha. Shreya Ghoshal aur Vishal Dadlani ki awaaz mein drama queen from the movie Hasi to Fasi. Wacky wisdom. You're listening to Radio 106.3 FM. Tanisha ke saath aap bindaas morning chal rahe hain yahan par. Aur Wacky Wisdom mein aaj hum baat karenge Amazon ki. Ji, jahan se hum cheeze khareedte hain, the marketplace. Yes. So, Jeff Bezos ne ye company start kari thi 1994 mein. And uska naam unhone pehle rakhne ka socha tha Kadabra. Abra Kadabra hota hai na, usme se Kadabra, because he gonna, you know, sell everything there. Aur initially it started as a book selling platform, by the way. Then he was not very okay with the name. He wanted an interesting name for his platform. So he was like, nahin, Kadabra mein itna maza nahin aa raha hai mujhe. I want something else, you know. He wanted ki jo naam ho is platform ka, wo ambition or, you know, scale ko suggest kare ki, like, कितना वास्ट है ये प्लेटफॉर्म, इस पर कितना कुछ मिल सकता है. दैट्स व्हाट हिज प्लान वाज. इट स्टार्टेड एज अ बुक स्टोर, बट वो आगे उसको और भी बढ़ाना चाहते थे, एक्सपेंशन चाहते थे, तो वो उसी हिसाब से नेम चाहते थे. नाउ देन व्हाट ही डिड, जो कि यूजुअली कोई नहीं करेगा. अगर आप किसी चीज़ का भी नाम सोच रहे हो, यू विल नेवर पिक अ डिक्शनरी, राइट? सो ही पिक्ड अ डिक्शनरी. He was like, I'm gonna go through all the words and I will see ki kaun se word ka meaning perfectly, you know, mere is idea ke saath sahi baithta hai. And zyada dur jana nahi pada, alphabetically chal rahe the dictionary mein, A se unhe Amazon mil gaya. And then he read Amazon River, it's enormous, it's massive. And he was like, yeah, exactly, my platform will be the same, it will be massive. Wahan pe eventually wo sab kuch milega aapko jo aap soch sakte ho. And that's how he came up with the name Amazon. Amazing, right? काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कडाबरा से अमेजोन तक आने की. एंड जैसा उनका विजन था ना, कि मैं चाहता हूँ कि मेरा एम्बिशन और जो मेरा स्केल है, जो इनॉर्मिटी है मेरे इस प्लेटफॉर्म की, वो उसके नाम से पता चले. That states itself, right? और आप जब अमेजोन का लोगो देखोगे तो ए टू जी के बीच में एक नीचे से एरो जा रहा है. मतलब कि आपको अमेजोन पे ए से लेकर जेड तक, यू नो, अल्फाबेट्स अल्फाबेटिकली जाओगे, जितनी चीजें हैं दुनिया में आपको सब अमेजोन पे मिल जाएगा. अमेजिंग. एंड दैट्स द थिंग अबाउट द पैशन, यू नो, द थिंग्स यू आर डूइंग, द वर्क यू आर डूइंग. इफ यू हैव स्टार्टेड अ बिजनेस, दैट्स द थिंग अबाउट इट. आप अलग से सोचते हो उसके लिए, आप उसके लिए अलग से एफर्ट्स डालते हो. एंड यहाँ पे मुझे आसमा जी का गुड मॉर्निंग आया हुआ है काफ़ी देर पहले, जो कि मैंने नहीं देखा था, तो मुझे माफ़ कीजिएगा आसमा जी. आई होप यू आर हैविंग एन अमेजिंग डे. फिलहाल भेज रही हूँ एक बहुत बढ़िया गाना. क्यों मजा आ रहा है विशाल मिश्रा की आवाज़ में. सुन रही है रेडियो 106.3 FM. जियो बिंदास मेरी जान.

फ्रॉम वेकेशन इन योर होम टाउन, तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर, सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में। ग्रोसरीज हो, फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स, सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर। तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल। नेस्टो हाइपरमार्केट, 152nd ब्रांच, नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस।

0: दस मॉर्निंग अर्जुन तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

0: Sunny se is gaari ki dil se kumari se panwari only on Radio Olive 106.3 FM. Tanisha aapke saath bindaas mornings chal rahe hain ab.
1: Ye hai chalti phirti dictionary.
0: यार वो एक आदत नहीं होती कि आपने किसी चीज़ के लिए मना किया है किसी को तो उन्होंने वही करना है. स्पेशली बच्चों में ये चीज़ होती है एंड कुछ बड़ों में भी होती है, समटाइम्स मुझ में भी है. सो वो आदत को कहते हैं रिकैल्सिट्रेंस, RECALCITRANCE, रिकैल्सिट्रेंस. बेसिकली यू नो बीइंग स्टबर्न, कोऑपरेट नहीं करना और बस मना करना. आपने बोला इसलिए नहीं करूंगी ये काम, ये वाला जो एटीट्यूड है दैट इज रिकैल्सिट्रेंस. एंड मुझे इस एटीट्यूड ने इतनी बारी मुश्किलों में फंसाया है पर बाज नहीं आ रही हूँ मैं. नो. एंड आई हैव सीन दिस इन माय नेफ्यू आल्सो कि अगर उसे बोला है कोको डू नॉट टच दैट लैपटॉप तो वो जाके घूम फिर के वहीं पहुंचेगा, उसे वही छूना है क्योंकि मना कर दिया है. क्यूरियोसिटी जाग जाती है एकदम से कि क्यों मना कर दिया है, अब तो करना ही पड़ेगा. सो या रिकैल्सिट्रेंस इज नॉट रियली गुड फॉर आवर हेल्थ बट सम ऑफ अस आदत से मजबूर है ना.

0: ये तो शाहरुख खान ने कह दिया, अब आगे सुनो रणवीर सिंह क्या कह रहे हैं। जी धुरंधर से ये गाना और 10 मूवी से 10 बहाने,
1: 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल, 10 बहाने करके ले गए दिल।
0: ओजी तो ओजी रहता है जी।

All these amazing tracks are lined up for you in this hour. फिलहाल भेज रही हूँ आंखों से तूने ये क्या कह दिया 2.0 भाई तेरा स्टार है मूवी से किसी ने नहीं देखी. Stay tuned to Radio Olive. Jio Bindaz.

0: लता पागल है मूवी से ब्यूटीफुल ट्रैक ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम. तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर. So there is this very famous chocolate brand जो कि जिनका tagline और you know जिनका theme basically ये है कि जब आपको भूख लगती है तो आप crazy हो जाते हो, है ना. So आप वो chocolate bar खाओ and then you will get your act together. Same चीज़ उन्होंने AI के लिए apply करी है. Can you imagine that? So this chocolate brand has made a chocolate bar for AI, ChatGPT basically. जब वो आपको उल जुलूल आंसर दे रहा हो ना आपके सवालों के, मतलब लेम. कभी कभी तो इतना गुस्सा हो रहता है मुझे, आई येल एट माई चैट जीपीटी कि भाई क्या कर रहा है तू, ढंग से जवाब देना मुझे. सो इंस्टेड ऑफ येलिंग एट इट, आप उसे एक चॉकलेट फीड कर दो. तो वो बेसिकली इट्स अ प्रॉम्प्ट. आपने उनकी वेबसाइट पर जब आप जाएंगे वहां से वो प्रॉम्प्ट कॉपी करके जब आप अपने चैट जीपीटी में डालेंगे, अपने एआई में डालेंगे, तो उसको इट विल फोर्स इट टू रीथिंक द आंसर. फिर से वो रिसर्च करेगा प्रॉपरली एंड विल गिव यू अ बेटर आंसर. सो बेसिकली जब एआई को भी भूख लगती है तो उसका भी दिमाग खराब हो जाता है. इस आइडियोलॉजी के साथ दे हैव कम अप विद दिस. How crazily the brands are trying to integrate themselves, you know, with this AI growing world. Chocolate bana sakta hai koi AI ke liye. Can you imagine this? This is going on another level, yaar. Sending Zabardast hit your way. Stay tuned, Ranjeev Bindas.
1: Ab suniye, Olive ka Zabardast hit. Zabardast hit.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बैक फ्रॉम वेकेशन इन योर होम टाउन तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में। ग्रोसरीज हो, फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स, सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर। तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल। नेस्टो हाइपरमार्केट 152nd ब्रांच नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस अलगराफा।

0: Tanisha.
1: दस मूवीज टाइटल ट्रैक ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM तनिशा आपके साथ में 10 मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर. एंड भाई ओजी तो ओजी होता है. इस गाने की जो वाइब है ना, आई मीन जो अभी रिसेंटली इसका रिवैम्ड वर्जन आया था, ज्यादा कुछ खास डिफरेंस था नहीं, बट स्टिल म्यूजिक में डिफरेंस था एंड आई कुड फील दैट. सो मैं तो इसी को एंजॉय करती हूँ. वेल, अभी मुझे आपको याद दिलाना था, इफ़ यू हैवंट फटाफट से जाओ सोशल मीडिया पे, radioolive.qa इज द हैंडल, वहाँ पे चल रहे हैं कॉन्टेस्ट, तो जाके पार्टिसिपेट कर लीजिए. और बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं और सब चीज़ के लिए अपडेट हम वहीं कर रहे हैं, तो अगर आप उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप मिस आउट कर जाएंगे ना यार. सो आई डोंट वॉन्ट दैट फॉर यू. फटाफट से जाइए फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्नैपचैट, टिकटॉक, सब जगह फॉलो कर लो, सो दैट आपसे कुछ भी मिस आउट ना हो. समझ रहे हो बात को? हाँ जी. फिलहाल भेज रही हूँ ए दिल है मुश्किल से टाइटल ट्रैक, अरिजीत सिंह की आवाज में. सुनते रहिए रेडियो 106.3 FM, जियो बिंदास मेरी जान.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
0: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल। जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: Danisha.
1: काफी केयरलेस आदमी है, ऐसे कैसे इतनी चीजें कोई खो सकता है यार. यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 FM दनिशा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं पर एंड आई हैव समबडी इन स्टूडियो विद मी.
2: हेलो हेलो
1: संदीप मोरे
2: नान तनिशा विशेषम एंड इफ आई से ऑल दिस
1: या टॉकिंग हिंदी और इंग्लिश. यस
2: इंग्लिश पॉसिबली यस. So, how are you?
1: I am very good. How are you?
2: I am doing amazing and had a wonderful vacation.
1: Uh-huh.
2: I just reached back, so I have this feeling to go back again.
1: I know, I understand.
2: I took a connection flight from Mumbai to Doha.
1: Uh-huh.
2: So, I was in Mumbai for 8 hours, okay?
1: Okay.
2: And this thing happened, I was calling mom, okay?
1: Uh-huh.
2: I called gaya, ye baat kiya ke. I can still come back.
1: आप बस एक इशारा दे दो मम्मी, मैं अभी मुड़ के आ जाऊंगा.
2: 2 hours, I'll be back there. So I can be there, eat your dinner tonight, everything, all these things. And she is like, cut the phone. She knew that if I say 2 times again.
1: हाँ ये आ ही जाएगा.
2: Yeah,
1: totally relatable. By the way, बाकी सब तो ठीक है. मेरे लिए क्या लेकर आया?
2: मैसूर पाक, ग्रीगी मैसूर पाक.
1: Okay, I like that. Yeah. And yeah.
2: And
1: the thing and, I asked for.
2: Yeah, that will come for sure.
1: Sandeep, yeah. Is bar.
2: This bar nahi, but yeah, sure.
1: Is bar main is ladke ko nahi chhodne wali hu. Isne mujhe pichli bar bhi aise hi dhoka diya tha.
2: Yeah, so she is a very huge fan of saris.
1: Yeah.
2: So whoever wants to gift her.
1: And no, and auntie has really good collection of saris.
2: Of course, yes. So, I am the one who is selecting all that. Obviously, she will have good
1: collection. Yeah, har cheez ka credit le lete hain. Aise hi log hote hain. Anyway, अभी मेरे जाने का वक्त हो गया.
2: And you know what? I met Sudev.
1: Oh wow!
2: Yeah.
1: हाँ, तो Sudev already बाहर है, तो मिलेगा ही ना तुझसे.
2: That's what he told me कि don't tell Tanisha one thing.
1: What?
2: That I could say.
1: अभी मेरे को जानने गए. ये गलत बात हो गई है. तो मैं जाती हूँ अपना मैसूर पाक खाने और ये बात इससे निकलवा के आती हूँ मैं. यू गाइस हैव एन अमेजिंग डे टू योरसेल्फ. अपना ख्याल रखिए और हमेशा याद रखिए कि आप बहुत इंपॉर्टेंट है ना.
2: या बाय गाइस,
1: बाय बाय, हैव एन अमेजिंग डे एंड स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास.

Good morning. You are listening Radio Olive 106.3 FM. This is me Muskan with you. और शो का नाम है Life Must है। भाई नया दिन नई शुरुआत और यहाँ पर कई सारे लोग हैं जिन्होंने कल सोचा होगा कि यार दुनिया में ऐसे एक्चुअली बहुत ज्यादा लोग हैं जो ये सेंटेंस बोलते हैं कि यार कल से पक्का, कल से जल्दी उठूंगा, कल से जिम जाऊंगा, कल से फोन कम और कल से हेल्दी ब्रेकफास्ट भी, क्योंकि आज संडे है, हमारा वर्क वीक स्टार्ट हो जाता है। सो हर सैटरडे हम यही सोचते हैं कि बस कल से पक्का। सो कल से जो काम करने के बारे में हम ये बोलते हैं ना कि मैं कल से अपनी लाइफ प्रॉपरली मैनेज करूंगा, लेकिन ये जो नया डे स्टार्ट होता है जहां पर यू नो हमें फील आ रही होती है ब्रांड न्यू वर्जन ऑफ आर सेल्फ की, ये लॉन्च करने वाली साइकोलॉजी में इस आइडिया को टेम्पोरल लैंडमार्क से समझा जाता है। कुछ डेट्स या मोमेंट्स जैसे कि नया वर्क वीक है, बर्थडे है, न्यू ईयर है, मंथ का पहला दिन है, हमें अपनी लाइफ को बिफोर और आफ्टर में डिवाइड करने का साइकोलॉजिकल मौका देता है। अब जैसे कैलेंडर कह रहा हो पुरानी तुम ठीक है अब नई तुम, जैसे इसीलिए 1st of January को जिम मेंबरशिप बढ़ जाती है, ठीक है। यूजुअली नए दिन जब स्टार्ट होता है जैसे कि पहली तारीख या फिर यू नो जो नया वर्क वीक, जैसे कि यहाँ पे संडे है, बाकी कंट्रीज में मंडे है, सो वहाँ पर डाइट स्टार्ट करते हैं लोग और संडे को हम और आप मिलकर नई नई चीज़ें डिसाइड कर रहे होते हैं। लेकिन शायद प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम नए प्लान्स बनाते हैं, प्रॉब्लम तब होती है जब हम परफेक्ट संडे का वेट कर रहे होते हैं। लाइफ ना संडे को मैजिकली इजी नहीं होने वाली, लेकिन एक छोटा डिसीजन आज भी लिया जा सकता है। सो आई एम श्योर कि आज आपने ऑफिस में आने के बाद अपना पूरा काम करने का प्लान कर लिया होगा और जिम डाइट अर्ली मॉर्निंग फोन कम ये सब चल रहा होगा, लेकिन आप मुझे बताइए कि इस वीक आपने क्या नया करने का सोचा है। 3311106 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: अल्टीमेट कतरी एडवेंचर सुख वाकिफ अलखोल।
2: टफ काम और भी आसान, कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ।
3: हाय, दिस इज कैलाश खेर एंड यू आर लिसनिंग टू कतार्स फर्स्ट हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव

याद है जब हम बचपन में किसी नए घर का एड्रेस याद करते थे तो हम बोलते थे ये वाला घर मम्मी के फ्रेंड का है, उसके बाद एक छोटा सा स्कूल आता है, उसके बाद ब्लू गेट, और फिर बड़े भैया बोलते थे कि हाँ हाँ मुझे याद है, और आज गूगल मैप ऑन करो और बस। बट वेट, फ्यूचर टेक 2040 की दुनिया इमेजिन कर रहा है जहां पर AR ग्लासेस और इंटेलिजेंट नेविगेशन सिस्टम लोगों को स्ट्रीट्स, बिल्डिंग्स, एयरपोर्ट्स और अनफेमिलियर प्लेसेस में कंटिन्यूसली गाइड कर सकते हैं। सोचिए फ्यूचर में आप किसी नई सिटी में जाते हो, आपको रोड का नाम याद नहीं है, कोई बोर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है, चश्मा बता देता है कि 150 मीटर के बाद लेफ्ट जाना है, एयरपोर्ट में भी ऐसे होगा, गेट नंबर B27 फॉलो द ब्लू एरो, और कन्वीनियंट एब्सोल्युटली। लेकिन यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, अगर टेक्नोलॉजी हमारे लिए रूट्स याद रखेगी तो हम खुद डायरेक्शन याद रखना भूल जाएंगे, ऑफ कोर्स। और आज हम फोन नंबर्स याद नहीं रखते, पहले 20-30 नंबर याद होते थे, मतलब मम्मी पापा भाई बहन बेस्ट फ्रेंड सबके नंबर याद होते थे, लेकिन आज देखिए कोई नंबर याद नहीं है। आज कॉन्टैक्ट लिस्ट में मतलब सिर्फ नाम लिखा होता है और आगे हम इमोजीज बना देते हैं, नंबर वो तो नहीं याद होने वाले। सो टेक्नोलॉजी मेमोरी को फ्री कर रही है, इसके लिए साथ ही हमारी डिपेंडेंस ऑन मेमोरी भी जो है वो बढ़ रही है। सो 2040 की दुनिया का इंटरेस्टिंग चैलेंज शायद ये नहीं होगा कि टेक्नोलॉजी क्या याद रखती है, सवाल ये होगा कि हम याद रखना चूज करते हैं या नहीं। सो गूगल मैप्स के बिना आप अपने सिटी में कितना सर्वाइव कर सकते हो, टेल मी, सच सच बताना। अगर मैं आपसे कहूं कि आज मैप नहीं चलेगा तो क्या आप किसी नई जगह पर जा पाओगे? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। नंबर इज सेम 3311063। रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: From vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट prices पर सिर्फ Nesto Hypermarket में groceries हो fresh food हो या daily essentials सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी profitable Nesto Hypermarket 152nd branch now open in Old Passport Office Algarafa

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद

एक अजीब यू नो कॉन्ट्रडिक्शन है. आज की जनरेशन किसी अननोन पर्सन को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकती है, स्ट्रेंजर की रील पर कमेंट कर सकती है, डीएम में मीम भेज सकती है, लेकिन जब बात आए सर आपसे करियर एडवाइस चाहिए, सडनली कॉन्फिडेंस गायब. भाई मैं बात कर रही हूँ नई जनरेशन यानी कि जेंजीज की. लिंक्डइन की इंडिया स्पेसिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग 83% जेंजी प्रोफेशनल्स नेटवर्किंग को लेकर बहुत ज्यादा हेजिटेट होते हैं. डिस्पाइट द फैक्ट दैट 79% प्रोफेशनल रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंट मानते हैं, 52% को समझ ही नहीं आता कि कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे करें, और 53% को कॉन्टैक्ट्स को मीनिंगफुल रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना बहुत डिफिकल्ट लगता है. सो ये तो थी मतलब रिपोर्ट. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, इंडिया जब मतलब इंडियन की बात करें तो इंडियन जॉब एप्लीकेंट्स जिनके पास कंपनी के अंदर एक प्रोफेशनल कनेक्शन होता है, लिंक्डइन डेटा के अकॉर्डिंग नियरली 8.5 टाइम्स मोर लाइकली टू गेट हायर्ड देन दोज विदाउट वन. ठीक है, मतलब कनेक्शन मैटर करता है, लेकिन यंग प्रोफेशनल्स का डर क्या है? वो मुझे जज करेंगे, मतलब शायद जेंजीज यही सोचते हैं, मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रही किसी को, या फिर फेक तो नहीं लगेगा. बस ऑनेस्टली ये सिर्फ जेंजी की प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है कि हम सब यू नो बचपन से सुनते आए हैं कि बेटा किसी से मांगना नहीं है. लेकिन नेटवर्किंग का मतलब मांगना नहीं होता, कभी कभी सिंपली अगर आप किसी से कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हो तो रिलेशनशिप का बिगनिंग इतना ही सिंपल हो सकता है. और शायद नेटवर्किंग का बेस्ट डेफिनेशन यही है कि लोगों को यू नो कनेक्ट करना, लोगों को जानना. सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि अगर आपको अपने करियर के लिए किसी के एक सक्सेसफुल पर्सन से 10 मिनट कॉन्वर्सेशन मिल जाए तो आप किस बात पर बात करना चाहेंगे? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311106. Stay tuned, Jio Bindas.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: Ready? To learn?
2: Yes.
1: To play?
2: Absolutely.
1: To grow?
2: With Maserati.
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस Maserati फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ।
2: मिल्क, चीज, योगर्ट, लवली एग्स।
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक Maserati है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद

बचपन से सीखते आए हमेशा सुबह शाम दो टाइम ब्रश करना, इंडियन चाइल्डहुड का यूनिवर्सल क्वेश्चन, बेटा ब्रश किया? मम्मी को आंसर चाहिए होता है हाँ, प्रूफ बस। और 2026 में मम्मी को प्रूफ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, टूथब्रश खुद बता देगा। भाई डायसन ने कैमरा जेट नाम का एक हाई टेक टूथब्रश लॉन्च किया है जिसकी प्राइस अराउंड है $499 और नाम में कैमरा सिर्फ मार्केटिंग नहीं है, मतलब इस टूथब्रश में 1000 पिक्सल कैमरा है जो आपके पूरे टूथ के अंदर इमेज को कैप्चर करता है रिपोर्टेडली अप टू 28 फ्रेम्स पर सेकेंड और सिस्टम टीथ के बीच के गैप्स जो है वो भी आइडेंटिफाई करके टारगेटेड माउथ रिंस जेट जो है वो डायरेक्ट करता है। ये डायसन ऐप के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो और डायसन के मतलब मुताबिक इमेज डिवाइस या क्लाउड पर स्टोर भी नहीं होती, सब आपका पर्सनल मामला है। आप इमेजिन कीजिए इंडियन पेरेंट को ये टेक्नोलॉजी मिल जाए, बस उनको और क्या ही चाहिए, मतलब जैसे ही वो पूछे आपसे कि ब्रश किया आप कैमरा दिखा दो। लेकिन जोक असाइड, टेक्नोलॉजी का डायरेक्शन जो है वो बहुत ही फैसिनेटिंग है। पहले स्मार्ट वॉच हमारी बॉडी को मॉनिटर करती थी, अब टूथब्रश जो है वो माउथ को मॉनिटर कर रहा है। हमारा घर ग्रेजुअली गैजेट से भर रहा है यार, हमारे बॉडी के बारे में डेटा कलेक्ट कर सकते हैं आप। और इसी के साथ क्वेश्चन ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है, क्वेश्चन ये है कि हम अपनी पर्सनल लाइफ में कितनी टेक्नोलॉजी अलाउ करना चाहते हैं। बिकॉज $499 का टूथब्रश के सामने 100 रुपए या फिर आप कह लो कि 10 रियाल के ब्रश भी शायद कह रहे होंगे कि मैडम मैं 10 साल से लॉयल हूं। सो आई विल से कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किसको लेके लॉयल हो, मतलब ये जो हमारा 10 रियाल का एक ब्रश आ जाता है नॉर्मली, या फिर ये $499 वाला डायसन का टूथब्रश। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं

भाई बॉलीवुड में ना कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, फिल्म खत्म हो जाती है लेकिन कैरेक्टर खत्म नहीं होता, लाइक मुन्ना, सर्किट, और अब एक बार फिर सर्किट ने फैंस को होप दे दी है। अरशद वारसी ने रिसेंटली मुन्ना भाई 3 को लेकर कहा कि संजय दत्त ने डायरेक्टर राजकुमार हिरानी को मतलब इसे स्ट्रिक्ट उसे रखा हुआ है कि ताकि फिल्म बन सके। अब ऑब्वियसली ये उनका ह्यूमरस वे था कहने का कि संजू बाबा फिल्म को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, फिल्म की ऑफिशियल कन्फर्मेशन भी नहीं हुई है। और इंटरेस्टिंगली मुन्ना भाई जो फ्रेंचाइजी है उसके पहले दो फिल्म मुन्ना भाई MBBS और लगे रहो मुन्ना भाई, इन दोनों के बीच में ऑडियंस ने सिर्फ कॉमेडी नहीं देखी, पहली फिल्म में डॉक्टर और मेडिकल सिस्टम पर बहुत ज्यादा हंसी मजाक ठहाके और इन सब की बात थी, और दूसरी ने बहुत ज्यादा फिलॉसफी को एक मास एंटरटेनमेंट में कन्वर्ट कर दिया। और सर्किट तो अपनी ही दुनिया था भाई, एक वर्ड पर आधी प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन यहां एक बिगर बॉलीवुड क्वेश्चन है, क्या सीक्वल बनाना जरूरी है? कभी सीक्वल पुरानी याद को ब्यूटीफुल कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाता है, कभी नहीं दे पाता, और कभी ऑडियंस ओरिजिनल को इतना परफेक्ट बना चुकी होती है कि सीक्वल का प्रेशर ना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। सो मुन्ना भाई 3 के केस में एक्सपेक्टेशन बहुत ही अलग है। सो यू टेल मी, मुन्ना भाई 3 या फिर ओरिजिनल को ओरिजिनली रहने देते हैं? यू टेल मी। 3311063 इज माई नंबर, फटाफट से व्हाट्सएप कीजिए। और सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, ये है लाइफ मस्त है।

0: आज डेट है 6 सितंबर, ठीक है। अब बॉलीवुड के एक ऐसे फिल्म मेकर का बर्थडे है जिनका नाम लेते ही एक लेटर दिमाग में आ जाता है, विच इज के राकेश रोशन। बॉर्न ऑन 6 सितंबर 1949, ही स्टार्टेड हिज करियर एज एन एक्टर एंड बाद में वो हिंदी सिनेमा के प्रोमिनेंट प्रोड्यूसर बन गए। लेकिन उनकी सबसे बॉलीवुड फन ट्रिविया पता है क्या है, उनकी डायरेक्टेड जो फिल्म है, मतलब उनके डायरेक्शन में बनी जो फिल्म है, उनके टाइटल में केक ऑब्सेशन है, खुद गर्ज, खून भरी मांग, किस रन कन्हैया, करण अर्जुन, कहो ना प्यार है, कोई मिल गया, क्रिश, मतलब एक पॉइंट पर ऑडियंस को फिल्म देखने से पहले ही अल्फाबेट पता होता है। और फिर कहो ना प्यार है, ऋतिक रोशन, दो रोल्स, म्यूजिक, रोमांस, डांस और एक एक्टर का लॉन्च जो बॉलीवुड हिस्ट्री का मेमोरेबल डेब्यू बन गया। उसके बाद कोई मिल गया और फिर क्रिश के थ्रू इंडियन सिनेमा में सुपर हीरो और साइंस फिक्शन को मास ऑडियंस तक लेकर जाना भी उनकी क्रिएटिव जर्नी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो आई विल से कभी कभी एक क्रिएटर को अपनी आइडेंटिटी इतनी स्ट्रांग स्टेब्लिश करनी चाहिए कि ऑडियंस को नाम देखने के पहले ही सिग्नेचर आ जाता है, विच इज के। सो आपकी फेवरेट राकेश रोशन फिल्म कौन सी है, करण अर्जुन, कहो ना प्यार है या कोई मिल गया या फिर क्रिश? 3311063 इज माय नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

एक अजीब सा फ्यूचर इमेजिन कीजिए। आप अपने एआई से पूछते हो कि अगर मैंने किसी को शादी में इनवाइट नहीं किया तो क्या वो बुरा मानेगा? एआई बोलता है कि कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। लेकिन अब सीरियस पार्ट, सितंबर 2026 में कम्युनिकेशंस एआई एंड कंप्यूटिंग में एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें रिसर्च ने 6 लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को 555 एवरीडे सोशल सिचुएशन पर टेस्ट किया और उनकी परफॉर्मेंस को 320 ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स से कंपेयर किया। क्वेश्चन था, सोसाइटी के एवरेज पर्सन को ये बिहेवियर कितना एप्रोप्रिएट लगेगा। रिजल्ट सरप्राइजिंग था। लार्ज लैंग्वेज मॉडल स्पेशली स्ट्रॉन्गर मॉडल्स एवरेज ह्यूमन पार्टिसिपेंट से बेटर एस्टिमेट कर पाए कि सोसाइटी किसी बिहेवियर को कितना एप्रोप्रिएट समझेगी। लेकिन रिसर्चर्स ने ये भी फाइंड किया कि एआई मॉडल्स की मिस्टेक एक दूसरे से मिलती जुलती थी जबकि ह्यूमंस की मिस्टेक ज्यादा इंडिपेंडेंट थी। और इंटरेस्टिंगली ह्यूमन प्लस एआई कॉम्बिनेशन ने बेस्ट परफॉर्मेंस दी। मतलब एआई ने सोशल लाइफ का सीक्रेट समझ लिया। नॉट एग्जैक्टली, स्टडी ने ये कहा कि एआई जो है वो इमोशन फील कर सकता है। ये स्पेशली पॉपुलेशन लेवल सोशल नॉर्म्स एस्टिमेट करने का टेस्ट था। लेकिन थ्रू फैसिनेटिंग ये है कि हम इंसान ना सोशल रूल्स लाइफ करते हैं, ठीक है, एआई उन्हें डेटा से इन्फर कर सकता है। तो फ्यूचर में शायद एआई बोले कि प्लीज़ ये मैसेज मत भेजिए, ये थोड़ा सा रूड लगेगा, और हम कहेंगे कि भाई तू मशीन है, तुझे कैसे पता? मे बी बिकॉज एआई ने ह्यूमंस को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर लिया है। नाउ एआई को पता है कि इंसान को क्या पसंद आता है, क्या पसंद नहीं आता। किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में, मतलब सोशल सिचुएशन में, एडवाइस किससे लोगे? बेस्ट फ्रेंड से, गूगल से या एआई से? मतलब एक टाइम था हर चीज हम गूगल से पूछते थे, उससे पहले बेस्ट फ्रेंड से और अब एआई से। यू टेल मी कि आप किससे सबसे ज्यादा एडवाइसेस लेते हो। 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव। स्टे ट्यून्ड। जियो विद अस।

0: कभी किसी ने आपसे कहा है रिलैक्स पहले सांस ले लो, और उस मोमेंट पर आपको लगता है कि भाई मेरी प्रॉब्लम सांस नहीं है। लेकिन रीसेंट रिसर्च इस सिंपल सेंटेंस को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना रही है। यू नो, दो तीन दिन पहले 2026 में अभी ही 3rd of September को साइंटिफिक रिपोर्ट में एक स्टडी पब्लिश हुई, जिसमें रिसर्चर्स ने देखा कि ब्रीदिंग रिलेटेड जो चेंजेस हैं और वर्किंग मेमोरी का रिलेशनशिप है वो इमोशनल डिस्ट्रैक्शन के टाइम पर क्या होता है। स्टडी का फोकस ये समझना था कि ब्रीदिंग से लिंक्ड ऑटोमेटिक चेंजेस जो हैं वो मेंटल स्ट्रेस को थोड़ा सा कम करते हैं, परफॉर्मेंस को थोड़ा बेटर बनाते हैं। इमेजिन आप ऑफिस में प्रेजेंटेशन बना रहे हो, फोन वाइब्रेट करता है, मैसेज आता है कि वी नीड टू टॉक, बस प्रेजेंटेशन का स्लाइड जो है वो गायब हो जाता है और माइंड में सिर्फ वो मैसेज चल रहा होता है। सो इमोशनल डिस्ट्रैक्शन हमारी अटेंशन को हाईजैक कर सकता है, और इसी कॉन्टेक्स्ट में ब्रीदिंग इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि ब्रीदिंग बॉडी को ऑटोमेटिक सिस्टम के साथ क्लोजली कनेक्ट करती है। तो जब कोई कहता है कि एक मिनट ब्रीद, मे बी वो बस मोटिवेशनल डायलॉग नहीं होता है, वो आपको अपने नर्वस सिस्टम को थोड़ा सेटल करने के लिए चांस दे रहा होता है। सो चलिए अभी एक काम करते हैं, शोल्डर्स लूज कीजिए, एक स्लो ब्रीद इन एंड स्लो आउट। सो आई विल से कि मिरेकल नहीं है कोई, सिर्फ एक टाइनी पॉज है जो आपको यू नो थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री बनाता है। सो स्ट्रेस में आपके डिफॉल्ट क्या करते हो आप, मतलब ओवर थिंकिंग, फास्ट ब्रीदिंग, साइलेंस या फिर अननेसेसरी चाय, क्या पसंद करते हो जब आप स्ट्रेस्ड होते हो? यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, नंबर है 3311063, स्टे ट्यून, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर song of the hour. Yeah, guys.

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Jio Bindaas. टफ काम और भी आसान, कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ।
1: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण।
2: दीपिका पादुकोण,
1: रेडियो ओलिव 106.3।
0: Olive Sonor Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

0: सो एक छोटा सा मेमोरी टेस्ट करते हैं। आपने कभी कोई डिसीजन लिया था और आज उस डिसीजन का रिजल्ट आपके फेवर में है, तो आप नेचुरली बोलते हैं कि मुझे पहले से पता था कि ये डिसीजन है, मेरा है और यही होगा। लेकिन आपको एक्चुअली पता था 2 सितंबर 2026 ऑलमोस्ट 4 दिन पहले कॉग्निटिव प्रोसेसिंग जर्नल में एक पब्लिश हुई स्टडी जिसने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को एक्सप्लोर किया। 117 लोगों ने रियल लाइफ टाइप डिसीजन सिनेरियो सॉल्व किए, उन्हें पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक दिया गया और बाद में टेस्ट किया गया कि उन्हें अपना ओरिजिनल डिसीजन कितना एक्यूरेटली याद था। रिसर्चर्स ने फाउंड किया कि पॉजिटिव फीडबैक से एसोसिएटेड जो डिसीजंस थे वो बेटर रिकॉल्ड हुए और जूनियर और सीनियर प्रोफेशनल्स के रिकॉल जो थे वो पैटर्न में भी डिफरेंस आया। इसका एवरीडे वर्जन अगर देखिए तो आपको पता चलेगा कि आपने जॉब चेंज की, 2 साल बाद सब अच्छा है और आपकी मेमोरी बोलती है कि मैं तो तभी डिसाइड कर लिया था कि ये बेस्ट मूव होगा। मेबी, बट मेबी उस रात आप 3 लोगों से एडवाइस ले रहे थे, स्ट्रेस में थे, डर लग रहा था और बस रिस्क लग रहा था। हमारा माइंड ना कभी कभी एंडिंग को देखकर बिगनिंग को रीराइट कर देता है और ये रिलेशनशिप्स में भी होता है। मैं तो स्टार्टिंग से ही समझ गई थी, रियली मेबी नहीं। मेबी ब्रेन को स्ट्रांग कंप्लीट जो है स्टोरी कंप्लीट करना पसंद है। सो आज एक ओल्ड डिसीजन याद कीजिए और खुद से पूछिए कि मैंने तब एग्जैक्टली क्या सोचा था। मेबी जब आप कतर आ रहे थे फर्स्ट टाइम, या फिर कुछ वैसा जो आपको लगता है कि यार ये जॉब ज्वाइन करने से पहले मेरे मन में क्या चल रहा था। सो व्हाट डिड आई एक्चुअली नो देन। सो अगर कोई ऐसा डिसीजन याद आ गया जो आपको लगता है कि यार हाँ, मतलब मेरे को थोड़ा सा डाउट तो हो रहा था करना चाहिए कि नहीं, बट आज एवरीथिंग इज गुड, सो यू टेल मी आपके साथ भी ऐसा होता है क्या। 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: Back from vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं. अब कतर में shopping करें best prices पर. सिर्फ Nesto Hypermarket में. Groceries हो, fresh food हो या daily essentials, सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर. तो अपनी shopping को बनाए और भी profitable. Nesto Hypermarket, 152nd branch now open in Old Passport Office, Algarafa.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट ऑफिस।

आज किताब की नहीं किताब के एक चैप्टर की बात करते हैं। वही सेपियंस का एक चैप्टर है द ट्री ऑफ नॉलेज, और उसमें सिखाया जाता है, बताया जाता है ह्यूमन लैंग्वेज का एक इम्पॉर्टेंट इवोल्यूशनरी एडवांटेज था गॉसिप। यस गॉसिप। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। अब आप सोचिए ये सर्वाइवल इंफॉर्मेशन है। गॉसिप थ्योरी का बेसिक आइडिया ये भी है कि लैंग्वेज ने ह्यूमंस को सिर्फ ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स के बारे में बात करने नहीं दिया, ह्यूमन अदर ह्यूमन के बारे में भी डिटेल इंफॉर्मेशन शेयर करनी शुरू की। कौन ट्रस्टवर्दी है, कौन अनरिलायबल है, किसने क्या किया, किसके साथ कौन था। अब इस किताब के जो राइटर हैं वो बताते हैं कि सोशल इन्फॉर्मेशन कुड हैव हेल्प ह्यूमन कॉर्पोरेट इन मच लार्जर ग्रुप। तो किताब के चैप्टर में ये सब हमें पता चलता है, और सडनली आपका फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल लगने लगता है आपको, क्योंकि मे बी यू नो ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन सोशल इन्फॉर्मेशन मशीन्स। पहले हम बोलते थे शर्मा जी ने क्या किया, फिर बोलने लगे कि उसके बेटे की कितनी बढ़िया करियर है, फिर आज बोलते हैं डू यू सी हर स्टोरी। मतलब आजकल तो सब कुछ स्टोरी पे होता है ना। सो टेक्नोलॉजी बदल गई है, ह्यूमन क्यूरियोसिटी एकदम सेम है। तो एक डेंजरस क्वेश्चन है आपके लिए कि आपके हिसाब से गॉसिप हमेशा बुरी चीज है या कभी कभी सोशल इन्फॉर्मेशन भी होती है। नंबर इज सेम 3311 1063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल

गॉसिप की बात करते ही इतने सारे मैसेजेस आने लगे एंड आई वाज लाइक सीरियसली यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है. भाई अब गॉसिप के साथ साथ मुझे आपको एक और बात बतानी है कि मेरे जाने का टाइम हो गया है और आज एक यू नो सजेशन के साथ जाऊंगी. बेसिकली आज संडे है, नया वर्क वीक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारे ईमेल्स, मीटिंग्स, ट्रैफिक, डेडलाइन सब कुछ मिलेगा आपको. सो आज रात एंटरटेनमेंट में कुछ कंप्लीटली डिफरेंट ट्राई कीजिए. मतलब कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म या अगर मूवी देखने का मन है तो ऑफकोर्स आपने वीकेंड पे बहुत कुछ किया ही होगा, पर आज आपका नया वर्क वीक स्टार्ट हुआ है तो बाहर जाने से अच्छा है कि घर पे टाइम स्पेंड कीजिए, कल की तैयारी कीजिए और इसी के साथ नो नोटिफिकेशन, नो कमेंट्स, नो एल्गोरिदम, सब कुछ अपने मन से कीजिए. और म्यूजिक एंजॉय करने का मन है तो भी रात को सुपर हिट म्यूजिक के लिए आप रेडियो ऑलिव सुन सकते हो. और शायद ना संडे को न्यू वर्क वीक से पहले ये एक अच्छा रीसेट हो सकता है क्योंकि पहला दिन है, आज आपका मन भी थोड़ा सा कम लग रहा होगा ऑफिस में. सो आई विल से कि आज रात को कुछ बढ़िया से ट्राई कीजिए और 10 मिनट के लिए एल्गोरिदम को डिसाइड करने मत दीजिए कि आपको क्या फील करना है, आप खुद डिसाइड कीजिए. फॉर नाउ आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा. विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक आपको छोड़कर जा रही हूँ. कल सेम टाइम सेम जगह पर मिलेंगे विद लॉट ऑफ न्यू कॉन्वर्सेशंस, लॉट ऑफ न्यू रिसर्चेस. तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. टफ काम और भी आसान. कार्नल ग्रुप लाया है शैंटोई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्नल ग्रुप नाउ.
1: हेलो, मैं हूँ नीना गुप्ता. आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3.
2: ओलिव सुनो.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: From vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में shopping करें best prices पर, सिर्फ Nesto Hypermarket में। Groceries हो, fresh food हो या daily essentials, सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर। तो अपनी shopping को बनाएं और भी profitable। Nesto Hypermarket, 152nd branch now open in Old Passport Office, Algarafa. Nesto,
0: all that you need. Olive Music Marathon, एक घंटा non-stop back to back.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर

0: दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुदेव, रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वैग के साथ स्वागत है। यह है रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और भाई चलिए शुरू करते हैं ऑलिव रिचार्ज को, जहां पे हम एक साथ बैठकर बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके साथ वक्त बताएंगे। तो चलिए आज का सिलसिला शुरू करते हैं। आप भी अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए 3311063 पर। बताइए क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब कुछ। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और भाई मिर्जापुर मूवी के रिव्यूज काफी अच्छे हैं। यूजुअली जब भी कोई सीरीज या फिर कोई भी एक लॉन्ग फॉर्मेट में अगर कोई कंटेंट जो है वो एक मूवी बनकर आती है तो लोग थोड़े स्केप्टिकल होते हैं, क्रिटिकल होते हैं, मगर मिर्जापुर के बारे में काफी बढ़िया रिव्यूज आए हैं। मैं देख नहीं पाया, मगर अगर आपने देखी है तो जरा मुझे बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा 3311063 पर मैसेज करके। उसके साथ साथ रिव्यू से एक और चीज मुझे याद आई, एक काफी इंटरेस्टिंग रिव्यू अमेजोन में पढ़ा मैंने, उसके बारे में बात करते हैं थोड़ी देर में। फिलहाल यहाँ पे गाने प्ले करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे एक बहुत ही बढ़िया रिव्यू जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो बेसिकली अमेजोन में एक बंदे ने एक तकिए के बारे में रिव्यू डाला था, ठीक है। तो उस रिव्यू का जो टाइटल है वो है कॉज्ड माई डिवोर्स और उसने 5 स्टार जो है उस तकिए के लिए दे रखे हैं। और रिव्यू में लिखा है कि मेरी वाइफ जो है उसका एक लॉ का एग्जाम था तो रात तक बैठ के पढ़ाई कर रही थी, तो उसने मुझे बोला था कि सुबह मुझे 7 बजे उठा देना, मगर इतना बढ़िया तकिया था कि नींद इतनी बढ़िया है कि अलार्म कब बजा पता नहीं चला। वो उठी, एकदम से उठी, देखा तो 1 बज रहे थे। वो गुस्सा हुई मेरे पे कि क्यों मुझे नहीं उठाया करके, गुस्सा करके बोली कि अच्छा ठीक है मैं निकल रही हूँ, बच्चों को मैं स्कूल छोड़ दूंगी, मगर तुम जरा काम करना, बच्चों को लेकर आ जाना, उनका शिफ्ट जो है सेकंड शिफ्ट करके ये चली गई, बच्चों को लेकर निकल गई। अब ये बंदा 6 बजे तक सोता रहा, 6 बजे उसकी बीवी ने चिल्लाकर उसे उठाया, तब जाके उठा तो पता चला ये फिर सो गया। और लास्ट में उसने उस रिव्यू में एक कमेंट लिखा है कि 10/10 फॉर द पिलो, नाउ दैट आई एम सिंगल एंड लिविंग इन एन अपार्टमेंट आई कैन फाइनली एंजॉय इट इन पीस करके। अब देखिए ऑब्वियसली ये रिव्यू पढ़ के लगता जरूर है कि ये तो ऐसे ही किसी ने मजाक में लिख दिया है, मगर मुझे इस बंदे की क्रिएटिविटी बहुत अच्छी लगी, इसलिए इसके क्रिएटिविटी के लिए 10/10। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे आज सुबह तनिषा ने बात की थी डिजिटल चॉकलेट के बारे में, जैसे कि स्निकर्स ने जो है डिजिटल चॉकलेट निकाला है। आप अपने एआई को दे सकते हो, जब वो थोड़े गलत आंसर्स दे या फिर थोड़े हैलुसिनेटेड आंसर्स दे तो आप उसे दे सकते हो करके। तो मैं सोच रहा हूं कि देखो भाई, जमाना इस तरीके से आगे बढ़ चुका है कि अब डिजिटल चॉकलेट्स जो है आने लग गए हैं, और क्या क्या चीज़ें डिजिटल हो सकती हैं। कैश जो है डिजिटल हो चुका है, चॉकलेट्स डिजिटल हो रहे हैं जो हम एआई को फीड कर सकते हैं। आपके हिसाब से, आपकी इमेजिनेशन के हिसाब से बताइए मुझे और क्या क्या चीज़ डिजिटल हो सकती है। ये सवाल यहाँ पे रहते हुए मैं एक और चीज़ आपको याद दिलाना चाहूँगा, वो ये है कि कुछ टाइम पहले शायद आपको याद होगा मार्क जुकरबर्ग ने बोला था कि भाई हम मेटावर्स क्रिएट कर रहे हैं, अब सब मेटावर्स में इंटरेक्ट करेंगे सब। बट अभी उसका कोई नामो निशान नहीं है, उसके बारे में कोई बात नहीं चल रही है। तो क्या ये डिजिटल चॉकलेट भी मेटावर्स की तरह सिर्फ कुछ टाइम के लिए आने वाला एक छोटा सा इनोवेशन है, या एक बहुत ही लंबे और बहुत ही इंटरेस्टिंग डिजिटल वर्ल्ड की ओर खुलने वाला एक दरवाजा है? आप बताइए आपको क्या लगता है। 3311063 पर मैसेज करके और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबे रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: मैं हूँ आदा शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3.

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैंने काफी इंटरेस्टिंग एक चीज देखी। एक लड़का, उसने एक पत्थर उठाया, ठीक है, जो एक बहुत ही वियर्ड शेप में था, उसको उसने लात मार के रोल करके 9 महीने के अंदर अंदर ऑलमोस्ट एक स्फेरिकल शेप दे दिया। और वो कह रहा है कि मैं इसे परफेक्ट स्फीयर की तरह बनाऊंगा। और मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई इतना खाली वक्त इंसान को मिल कैसे जाता है, मतलब ये सोचा कैसे उसने कि मुझे चलो इस पत्थर को जो है अब एक स्फीयर बनाना है। एनीवे, वो बंदा बहुत एफर्ट डाल रहा है, मुझे काफी अच्छा लगा उसने बहुत एफर्ट डाला है। 9 महीने से हर दिन जो है वो उस पत्थर को ऐसे किक करता रहता है, फ्रिक्शन से जो है उसका सरफेस स्मूथ हो रहा है। और मैं सोचा कि भाई एक तो वक्त, दूसरा ये सोच, ये दोनों चीजें आई कहां से उसके पास? और यही सवाल मुझे भी जो है आजकल बहुत हॉन्ट कर रहा है। फिलहाल देखिए, हर किसी का अपना तरीका होता है एंजॉय करने का, हर किसी का अपना तरीका होता है चीजों को एक्सप्लोर करने का, मगर मुझे खबर काफी इंटरेस्टिंग लगी, सोचा आपके साथ शेयर कर लूं। और यही बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि भाई अगर आप अपने ऑफिस में रेडियो ऑलिव की टीम को इनवाइट करना चाहते हो ताकि हम आपके ऑफिस पर आए, बहुत बढ़िया तरीके से चिल करें, एंजॉय करें, इंटरेक्ट करें आपके साथ और आपको एंटरटेन करें, साथ ही साथ आपको रिचार्ज और रीएनर्जाइज कर दें, तो हैप्पीनेस लॉन्च के लिए रजिस्टर करना मत भूलना। रजिस्टर करने के लिए आपको मैसेज करना है HL स्पेस आपकी कंपनी का नाम हमारे व्हाट्सएप नंबर पे विच इज 3311063। और यही बात याद दिलाते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबे रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: लला लला लला लला लला लला लला जाल तेरा लला.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और आज एक्सीडेंटल इन्वेंशंस में हम बात करेंगे एक ऐसे इन्वेंशन के बारे में जिसने सही में मेडिकल फील्ड में जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से तबाही मचा दी। तो 1895 में एक जर्मन फिजिसिस्ट जो है जिनका नाम है विलहेम कॉनराड रोंगटेन, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कैथोड रे ट्यूब्स के साथ एक डार्क रूम में, ठीक है। और उन्होंने नोटिस किया एक फेंट ग्लो जो एक नियर बाई केमिकली कोटेड स्क्रीन से आ रहा था। अब जब उन्होंने देखा ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने रियलाइज किया कि इनविजिबल रेज जो हैं वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू पास कर रहे हैं और उनके शैडो को जो है स्क्रीन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और इसी एक चीज ने मेडिकल इमेजिंग को रेवोल्यूशनाइज किया और एक्सरेज की ओर एक रास्ता दिखाया। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.
1: Back from vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं. अब कतर में shopping करें best prices पर. सिर्फ Nesto Hypermarket में. Groceries हो, fresh food हो या daily essentials, सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर. तो अपनी shopping को बनाएं और भी profitable. Nesto Hypermarket, 152nd branch now open in Old Passport Office, Algarafa. Nesto,
2: all that you need. Hi everyone, मैं हूँ अरमान मलिक.
3: अरमान मलिक.
4: I'm number one.
2: 106.3 FM, Radio Olive, Geo Bindas.
0: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। कभी कभी लाइफ में हमारे साथ कुछ ऐसी चीजें हो जाती है, वो उस टाइम पे जो है प्रोसेस करना शायद थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी हम एंग्शियस हो जाते हैं, कभी बहुत गुस्सा आता है हमें, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट तरीके से जो है हम चीजें महसूस करते हैं। जब आप किसी भी चीज या फिर किसी भी एक सिचुएशन में हो और एक ओवरवेलमिंग इमोशन आता है, तो मैं एक छोटा सा टिप जो है आपको देना चाहूंगा, वो यही है कि ट्राई टू स्टेप बैक। इमेजिन कीजिए कि आप एक कदम पीछे रख रहे हैं ताकि आपको अच्छे से महसूस हो या फिर पता चले कि हाँ ये हो रहा है। सो यू रजिस्टर व्हाट इज हैपनिंग, आप प्रॉपरली प्रोसेस कर पाओ। तो यूजुअली क्या होता है, जब भी कोई सिचुएशन होता है हम क्या करते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे ही फीलिंग्स आती है हम रिएक्ट कर जाते हैं, बट उसके बजाय जरा एक मोमेंट के लिए आप स्टेप बैक कीजिए, सोच के देखिए, आपको एक बेटर रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। और यही बात याद दिलाते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: Awesome. Radio Olive पर आने वाला गाना Cool Song of the Hour।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है। Awesome.

0: Pasar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas. टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: लगा और हो जा रिचार्ज।
0: ऑलिव रिचार्ज, रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
2: This hour is brought to you by
3: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हम आपको यही याद दिलाना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक रेडियो ओलिव के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया, जानी तो क्या किया, सीधा जाइए रेडियो ओलिव के इंस्टाग्राम पेज पे, radioolive.qa, वहां पे अगर फॉलो बटन दिख रहा है तो उसे प्रेस कीजिए, फॉलोइंग दिख रहा है तो बहुत बढ़िया और आप हमारे कॉन्टेंट को चेकआउट कर सकते हैं, पोस्ट देख सकते हैं, लाइक शेयर कॉमेंट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, हमें सुनते हुए एक वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल सकते हैं, हमें टैग कीजिए, हम उस स्टोरी को रीशेयर करेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत सारे बढ़िया बढ़िया डिजिटल कॉन्टेस्ट जो है हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आते हैं, तो मैं यही बोलूंगा कि आप उसे चेकआउट कीजिए, क्योंकि गिफ्ट जीतने के मौके भी हैं। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: जब मिल सकता है और भी ज्यादा, तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
1: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर,
0: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
1: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिले।
0: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
2: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
3: This hour is brought to you by
4: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

तो भाई धीरे धीरे टाटा बाय बाय गुड बाय करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 5 बजने वाले हैं, जबरदस्त इवनिंग जो है शुरू होने वाला है। तो दिल थाम कर बैठिए और यही याद दिलाते हुए हम भी जरा निकलते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं। जाते जाते जाते आपको यही याद दिलाना चाहेंगे कि आप अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना और हमें जरा दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। बिंदास। अनलॉक योर चाइल्ड्स पोटेंशियल विद ब्रिलियंट कतर 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvatra. For more details, call 500-561-23.

कैसे हैं आप जी? मैं हूँ आपकी कशिश जी और आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग। अब देखिए यार, आज मैं जी जी जी जी इतना इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने ना आज इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी जिसमें ये लिखा था कि अगर आपको अपनी कॉरपोरेट लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो सिर्फ जी जी जी जी ही कहिए, एंड बाकी ये जेंजीज की फिलॉसफी से पूरी तरीके से अपोजिट है क्योंकि जेंजीज कभी भी अगर उनका मन नहीं है तो जी और यस नहीं कहेंगे, वो हर बात पे नो कह देते हैं। पर ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नई नई हूँ कॉर्पोरेट में तो सीख रही हूँ। अगर आपके पास कुछ टिप्स है तो आप मुझे बता दीजिएगा क्योंकि जबरदस्त इवनिंग पे अब हम 9 बजे तक यहीं पर डेरा जमा कर रखने वाले हैं, आपकी बेसिक बोरिंग इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने वाले हैं। बंदी का नाम है आपकी कशिश एंड हम बहुत सारा फन फॉलिक मस्ती मजा करने वाले हैं। सो वॉल्यूम बढ़ाकर गानों के साथ साथ मेरी बातचीत इंजॉय करो और कहते रहो जियो बिंदास। आती हूँ मैं इस गाने के उस पार, आप जो है वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय करो और स्टे ट्यून्ड रहो।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 5:10. दैट इज 5:10. स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.
2: टफ काम और भी आसान. कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्नल ग्रुप नाउ.
3: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक. 106.3 FM रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
4: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ऑलिव पर. जियो बिंदास
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद.
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
7: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

0: जितने भी लोग कतर में काम के सिलसिले में अपना देश छोड़कर यहाँ पर आए हैं ना, सो उन्हें एक बात से काफी अच्छी रियलाइजेशन होगी कि अगर आप अपने एनुअल वेकेशन का टाइम गर्मियों से मैच नहीं करते ना, तो आपको काफी दुख होता है, मतलब काफी बुरा फील होता है, क्योंकि अभी मुझे तो ऐसा हो रहा है। वेलकम जी 106.3 रेडियो आलिफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बेसिक बोरिंग इवनिंग को जो है मैं मस्त बना रही हूँ एंड अमेजिंग बना रही हूँ एंड जबरदस्त बना रही हूँ। अब देखो यार कि काफी सारे लोगों ने अभी बैक टू स्कूल जो है हुआ है, सो काफी सारे लोग अब छुट्टियों से वापस आ रहे हैं, वापस कतर आ गए हैं एंड सब लोग वेकेशन पे गए हुए थे बेसिकली, लेकिन जिनको छुट्टी नहीं मिली या जिनकी एनुअल वेकेशन जो है वो सितंबर के एंड में या अक्टूबर के एंड में, नवंबर में, दिसंबर में आती है, उन लोगों को कितना दुख होता होगा ना, बिकॉज कतर में सबसे बेस्ट मौसम अगर कभी होता है तो मैं जिस टाइम पर आई थी ना, मतलब जनवरी फरवरी दिसंबर, इस टाइम पे होता है एंड इतना अमेजिंग लगता है। मतलब आपको ये जो 4-5 महीने हैं ये ऐसे लगेंगे कि यार मैं किसी ऐसी खूबसूरत जगह पे कैसे हो सकता हूँ, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। एंड ये गर्मी वाला टाइम जो है आप सिर्फ इसी होप में गुजारते हो कि बस वो वक्त आने वाला है, एंड जैसे ही वो वक्त आता है आपको आपकी कंट्री जाना पड़ता है जहाँ पे मौसम कुछ ज़्यादा अच्छा हो नहीं रहा होता है, सो काफ़ी दुख होता है। अभी जैसे क्या हो रहा है कि इंडिया में ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है एंड मेरे घर वाले मुझे ना फोटो खींच के भेज रहे हैं एंड वीडियोज़ बना के भेज रहे हैं, देखो यहाँ कितनी अच्छी बारिश हो रही है। तो कल फाइनली मुझे भी उन्हें कुछ बताने का मौका मिला एंड मेरे इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट आई कि अब हो सकता है कि 2 दिन जो है कतर के कुछ इलाकों में बारिश हो। वैसे तो मुझे दिख नहीं रही है होते हुए, लेकिन न्यूज़ आई थी कि हो सकता है कि कुछ इलाकों में जो है बारिश हो, तो वो स्क्रीनशॉट मैंने उन्हें भेज दिया कि देखो हमारे यहाँ भी बारिश होने वाली है। ठीक है, अभी हुई नहीं है लेकिन हो सकती है। सो अगर आपके एरिया में आपको ऐसा लगा है कि बारिश हुई है तो प्लीज़ मुझे बता देना, वरना मुझे लगेगा कि मेरा इंस्टाग्राम मुझसे झूठी बोलता रहता है। सो 3311063 पर जल्दी से मैसेज करके मुझे बताइए एंड फिलहाल जो है अमेजिंग वाले गाने इन्जॉय कीजिए। थोड़ी सी देर में आपको मैं बताऊंगी कि मौसम का क्या मामला चल रहा है, टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है। स्टे ट्यून्ड रहिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जी उपिंदर।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
2: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर,
1: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
2: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिलें।
1: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास।
4: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

अगर मैं जो है गर्मी के मौसम के बारे में खल्लास कहना चाहूँ तो बस कुछ ही वक्त और बचा है, फिर ये गर्मी का मौसम हो जाएगा खल्लास, और फिर वो मौसम आ जाएगा जो हमें काफी पसंद है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बेसिक बोरिंग इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखी है। मौसम की बात जो है वो हम करने वाले थे। 37 डिग्री सेल्सियस इस वक्त का दोहा में टेम्परेचर हो गया है, आज का हाईएस्ट टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस और आज का लोएस्ट टेम्परेचर रहने वाला है 33 डिग्री सेल्सियस। अब से कुछ देर में जो है वो सनसेट होने वाला है, सो अगर आप लोग कहीं रुके हुए हैं, कहीं खड़े हुए हैं या सिग्नल पर रुके हुए हैं बेसिकली, या पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी कर रहे हैं और आपको सुर्ख सुरमई सा आसमान दिख रहा है, तो जल्दी से एक फोटो खींच के मुझे भेज दीजिए यार। अगर एक वॉलपेपर वर्दी फोटो मेरे पास आ जाएगी तो मेरे लैपटॉप का, मेरे टैबलेट का, मेरे फोन का वॉलपेपर बन जाएगी। एंड देखिए इस बिना खिड़की वाले स्टूडियो में मुझे ज्यादा अच्छा लगता नहीं है, सो अगर आप लोगों के कैमरे की नजर से मुझे बाहर का मौसम दिख जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा ना। इतनी सी इल्तजा है मेरी, इतने प्यार से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ 3311063 पर जल्दी से आसमान की, बादलों की, सूरज की ढलते हुए फोटो जो है प्यारी सी मुझे भेज दीजिए, और उसके बदले में जब वी मेट मूवी से मोहित चौहान की आवाज में एक बहुत ही रोमांटिक वाला ट्रैक मैं आपको सुनाने वाली हूँ। सो आप ये गाना जो है वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय करो इस मौसम के साथ। मैं हूँ आपकी कशिश और फोटो भेजना ना बिल्कुल मत भूलना। स्टे ट्यून्ड रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: Back from vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं. अब कतर में shopping करें best prices पर. सिर्फ Nesto Hypermarket में. Groceries हो, fresh food हो या daily essentials, सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर. तो अपनी shopping को बनाए और भी profitable. Nesto Hypermarket, 152nd branch now open in Old Passport Office, Algarafa. Nesto,
2: all that you need. Ready?
3: Ready.
2: To learn.
3: Yes.
2: To play.
3: Absolutely.
2: Grow
1: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ.
3: मिल्क, चीज, योगर्ट, लेबनी, एग्स.
1: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस.
4: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग. सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास.
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद.
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
7: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

0: जब मिल सकता है और भी ज्यादा, तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
1: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर,
0: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
1: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर।

0: सचिन टंडन की आवाज में कुछ तो जादू है, इनके गाने जो है अलग से लगते हैं, मतलब थोड़ा सा लीग से हटके फील होते हैं, मतलब मुझे तो ऐसा ही लगता है। देखो यार, मैं ना थोड़ी देर के लिए खो गई थी क्योंकि मैं ना मुड़ गई थी आप लोगों के मैसेजेस की तरफ। सो क्या है कि जो हमारा सिस्टम है जिसपे आप सबके मैसेजेस आते हैं वो है लेफ्ट की तरफ, एंड मैं लेफ्ट की तरफ मुड़ी एंड मैं ये फोटोज देख के इतनी मेस्मराइज हो गई कि मैं भूल गई कि माइक किधर रखा है। सो बता देती हूँ मैं कि थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था कि यार मुझे ज़रा बाहर के नज़ारे दिखा दीजिए, तो अब फाइनली जो है वो सनसेट हो चुका है, लेकिन लोगों ने मुझे सनसेट होने के पहले जो है बहुत ही अच्छी अच्छी फोटो भेजी है। राकेश कुमार जी ने बहुत ही खूबसूरत सी फोटो भेजी है, एंड मोहम्मद यूसुफ खान जी ने मुझे हैप्पी संडे इवनिंग कहा है, एंड वकास जी ने, मालिक वकास जी ने भी बहुत ही अमेजिंग फोटो भेजी अपनी कार के डैशबोर्ड से खींच के। ताहिर जी ने भी एक बहुत ही खूबसूरत जो है मुझे सनसेट की फोटो भेजी है। डीजे जी ने भी बहुत ही प्यारी इमेज भेजी है, वाव, मतलब इसमें जो है वो ट्रीज दिख रहे हैं, उन ट्री के बीच में से एक सन डॉट की तरह निकला हुआ है, बहुत ही खूबसूरत, थैंक यू सो मच। एंड मुबारक जी ने भी बहुत अच्छी फोटो जो है वो भेजी है मुझे। वैसे सन से ज्यादा तो इसमें कार दिख रही है, लेकिन ठीक है, आपके एफर्ट्स के लिए 100/100। ओके, एंड टावर्स के बीच में से एक सन निकलता हुआ दिख रहा है हमें रेनू जी की फोटो में, थैंक यू सो मच रेनू जी। विक्रांत जी ने सबसे पहले मुझे फोटो भेजी थी एंड सबसे खूबसूरत फोटो भी इन्होंने मुझे भेजी है, थैंक यू सो मच विक्रांत जी, बहुत ही अच्छा लगा आपकी ये फोटो देखकर। एंड यार सभी लोगों ने बहुत ही खूबसूरत फोटोज भेजी है, तो थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे वॉलपेपर्स जो है वो मुझे अब मिल चुके हैं, वैसे कल भी मैं सेम रिक्वेस्ट लेकर आपके पास आऊंगी। वैसे अभी ये बता दूं कि थोड़ी सी देर में हम खेलने वाले चुटकी भर सॉन्ग, जहां पर एक तड़कता भड़कता सा गाना मैं आपको सुनाऊंगी थोड़ा सा, आपको गेस करना होगा कि ये गाना कौन सा है। सो वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय करो आपकी कशिश के साथ, थोड़ी सी देर में जो है वो गाना लेकर मैं आने वाली हूँ, कॉन्टेस्ट लेकर मैं आने वाली हूँ। फिलहाल तेरा पैसा मेरा पैसा गाना जो है आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, वेलकम टू द जंगल, से इसे एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: Here we go.

क्यों थक रहे हो?

0: Trek. Satang Trek. Brought to you by Danadal Pahar. The ultimate Katri adventure. Souk Waqif Alkhor.
1: तो जी वक्त हो गया है आपको वक्त बताने का. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 6:11. दैट इज 6:11. स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.
2: बैक फ्रॉम वेकेशन इन योर होम टाउन तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं. अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में. ग्रोसरीज हो, फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स, सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर. तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल. नेस्टो हाइपरमार्केट 152nd ब्रांच नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस अलगराफा.
3: सलाम प्रणाम नमस्कार वणक्कम. मैं हूं जैकी श्रॉफ. रेडियो ऑलिव बोलो बिंदास.
4: बातें नहीं एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ऑलिव पर. जियो बिंदास
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ.
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
7: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

जिस तरीके से ये इस गाने के बीच में दिल दिल दिल दिल दिल दिल दिल दिल दिल बोलते हैं ना, मतलब मुझे सच में कभी कभी लगता है कि इनके दिल दिल बोलने की वजह से मेरे दिल की धड़कन जो है वो रुक सी जाएगी। वेलकम जी 106.3 रेडियो अलिफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश अंशु, आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बेसिक बोरिंग इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखी है। अब देखिए, वक्त हो गया है आपके साथ चुटकी भर सॉन्ग जो है वो खेलने का, क्योंकि एक चुटकी सॉन्ग की कीमत तुम क्या जानो, आपका नाम आप इमेजिन कर सकते हैं, मैं तो आपकी कशिश हूँ। सो आपकी कशिश ने डिसाइड किया है कि अमेजिंग वाले गाने जो है वो आपके लिए लेकर आ रही थी, लेकिन अभी तक सारे गाने जितने भी हमने इस शो में कवर किए हैं वो ज्यादातर या तो शाहरुख खान के थे, एंड फिर शाहरुख खान से मैंने थोड़ा सा मूव ऑन करने की कोशिश की तो मैं सलमान खान के शादी वाले गानों पर पहुंच गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार हटाओ, अगर वाइब चाहिए, चटपटे गाने अगर कशिश सुना रही है सो कुछ एकदम खट्टा सा ऐसे चटपटा सा होना चाहिए। सो इसीलिए अब मैंने ये गाने को खट्टा क्यों कहा है, चटपटा क्यों कहा है, ये अभी आपको गाना सुन के समझ आएगा। तो फिलहाल वॉल्यूम बढ़ाकर अपने कान लगाकर और ध्यान लगाकर सुनो इस गाने को, एंड फिर मुझे मैसेज करके बताओ कि ये जो गाना है इसका नाम क्या है, एंड ये गाना कौन सी मूवी का है। वैसे तो टेक्निकली मैंने अपना ही रूल तोड़ा है, शाहरुख एंड सलमान का गाना नहीं था, बट इस गाने में सलमान खान नहीं है, शाहरुख खान भी नहीं है। ओके, समझ आएगा आपको जब मैं गाना सुनाऊंगी, अगर आप बॉलीवुड फैन है तो। तो फिलहाल वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए, मतलब एंजॉय मत कीजिए, वॉल्यूम बढ़ाकर ध्यान दीजिए कि ये गाना कौन सा है।

यार बताओ बताओ, ये जो इन्होंने तरीका बताया है, ये गाने के तौर पे कितना खूबसूरती से इन्होंने तरीका बता दिया। आप मुझे बताइए ये गाना कौन सा है। अगर आपने पहचान लिया तो ओजी बॉलीवुड फैंस जो है वो समझ गए होंगे। तो 3311063 ये जो नंबर है, इसे जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर डालो और मुझे आंसर जो है वो भेज दो। ऑडियो नोट भेज सकते हो, वीडियो नोट भेज सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, बस आंसर दे दो, बता दो मुझे कि ये कौन सा गाना है। 3311063 मैसेज आया है मुझे कि कशिश एक बार और गाना सुना दो, हमने जो है ध्यान से सुना नहीं, तो लास्ट बार ठीक है, कान लगाकर और ध्यान लगाकर सुनना कि ये गाना कौन सा है।

0: अब तो देखो बहुत हो गया, अब तो मैंने बहुत हिंट दे दी और बहुत इंतजार भी कर लिया। 3311063 इज द नंबर, जल्दी से मुझे आंसर दे दो। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द आवर इंतजार कर रहा है आपका आपके रेडियो सेट पर। वॉल्यूम बढ़ाकर इसे एंजॉय करो आपकी कशिश के साथ एंड कहते रहो जी ओपन दास
1: रेडियो ऑलिव पर। आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बिंदास रेडी टू लर्न टू प्ले टू ग्रो
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
3: मिल्क चीज योगर्ट लवली
2: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस
4: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Nanatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
5: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है. क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग. सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
7: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
8: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

कहेगा कि ये गाना अनजान अनजानी मूवी से नहीं है, ये जो गाना है ये युवा मूवी से, क्योंकि इस गाने में इतनी बार अनजाना अनजानी इतने सुर में कहा है लकी अली जी ने कि मुझे सच में लगा था कि यार ये अनजान अनजानी का है यार, मैंने क्यों नहीं सुना ये गाना। वेलकम टू 106.3 रेडियो अलिफ पर, मैं हूं आपकी कसूस एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूं जबरदस्त इवनिंग, जहां पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखो यार, मैंने ना आपसे चुटकी भर सॉन्ग में जो है एक चुटकी भर गाना आपको सुना कर ये पूछा था कि मुझे बताओ ये गाना जो है कौन सी मूवी का है ना, इस गाने का नाम क्या है, एंड आप सब ने बॉलीवुड यू नो फैंस ओजी फैंस ने बिल्कुल सही गेस किया है। एंड मैं जो है आज वक्त ज़्यादा जो है ज़ाया ना करते हुए जो है आंसर बता दूंगी। पहले मैं विनर्स अनाउंस करती थी एंड उसके बाद फिर आंसर डिस्क्लोज करती थी, क्योंकि जिन लोगों ने नहीं सुना है उन्हें भी मौका दे देते थे हम। लेकिन आज मैं जो है सबको बताने वाली हूँ कि अभी किस किस के आंसर हैं। वैसे आंसर्स जो है अभी भी आप दे सकते हैं, क्योंकि मैं आंसर्स बताने वाली हूँ तो कॉपी भी करना चलता है, कोई बात नहीं, हमारा गेम है, हमारे रूल्स हैं, हम कर सकते हैं हमारे जो मनो। सो बहुत सारे लोगों ने मुझे सही आंसर दिया है एंड सबसे पहले तो मैं आपको एक और बार जो है गाना सुनाना चाहती हूँ, चुटकी भर सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ, ताकि जिन लोगों ने अभी तक आंसर नहीं किया है वो भी हमें आंसर कर सकते हैं।

0: जिन लोगों ने आंसर नहीं किया उनको समझ आ गया हो 3311063 पर अभी भी आपके पास मौका है, जल्दी जल्दी मुझे मैसेज कर दो तो मैं आपके मैसेजेस जो है वो पढ़ लूंगी, आपके आंसर्स जो है वो पढ़ लूंगी। ऐश्वर्या राय बहुत ही खूबसूरत ब्लू कलर के लहंगे में डांस करते हुए, आह कितनी खूबसूरत, और उस वक्त ये कितना ट्रेंड में था, मैं खैर तभी पैदा हुई थी, तब मैं एक दो साल की होंगी या शायद हाँ एक आध साल की होंगी, अगर ये 2002 से 2003 से पहले जो है आ गई थी मूवी, सो मैं अपनी एज क्यों बताऊं आपको। फिलहाल आंसर्स देख लेते हैं, समाधान ने जो है इस प्रॉब्लम का समाधान देते हुए, जी हाँ समाधान हमारे एक लिसनर का नाम है, उन्होंने बड़े ही कॉन्फिडेंस से ऑडियो नोट भेजा है कि अरे कशिश मुझे तो जो है सब पता है, एंड आप इनका ऑडियो नोट सुनिए जरा। समाधान वेल डन,
1: कशिश दिस इज समाधान, ये गाने में ऐश्वर्या राय है और अजय देवगन है और मूवी का नाम है, सलमान खान भी यही मूवी में,
0: किस तरीके से सलमान खान का हार्ट ब्रेक होता है उसके बारे में ये लव स्टोरी है, ठीक है, सो वेरी नाइस। लेकिन बाद में इन्होंने मुझे गाने का नाम जो है वो बताया है, पर हम गाने का नाम जो है वो वेस्ली जी से जो है वो सुनने वाले, वेस्ली जी ने भी ऑडियो नोट भेजा है, बताइए वेस्ली जी क्या है आंसर।
2: कशिश ये गाना है निम्बोड़ा निम्बोड़ा निम्बोड़ा, मैं गा के बताऊंगा चलेगा ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: निम्बोड़ा निम्बोड़ा निम्बोड़ा निम्बोड़ा निम्बोड़ा निम्बोड़ा, एक ताजा ताजा छोटा छोटा निम्बोड़ा लाई दो।
0: मुझे भी सर बस आपके जितना ही कॉन्फिडेंस चाहिए कि इतना अच्छा मतलब मैं गा सकूं ऑडियो नोट पे, क्योंकि मैं ऑडियो नोट पे कुछ कहती हूँ एंड मेरी आवाज जो है वो कुछ और आने लग जाती है, इसीलिए तो कोई अगर स्टोरी भी अपलोड करता है ना मेरे रेडियो शो की रिकॉर्ड करके तो मैं उसे जो है स्टोरी पे शेयर कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आवाज शायद अच्छी नहीं आ रही है। खैर आप लोग मेरी आवाज की तारीफ अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। फिलहाल थैंक यू सो मच, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है, आंसर है निबोड़ा निबोड़ा फ्रॉम हम दिल दे चुके सनम, एंड बहुत ही क्यूट सा गाना है, एंड लेमनेड बनाने की फुल रेसिपी जो है इसमें बताई गई है, एंड किसी ने मुझे मैसेज किया है, ओके अरिजीत दे जी ने हमें मैसेज किया है, उन्होंने लिखा है इन्होंने हमें आंसर दिया है एंड हम दिल दे चुके सनम को जो है इन्होंने लिखा है HDDCS, वाओ थैंक यू सो मच, एंड बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है, अस्मा जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, नितिकेश जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, उन्होंने लिखा है निबोड़ा निबोड़ा कैन बी यूज टू मेक लेमनेड्स, यस थैंक यू सो मच। उसके बाद मनी जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ऐश्वर्या राय ने इस गाने में डांस किया है ये भी इन्होंने लिखा है, इसके बाद स्मिता जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, थैंक यू सो मच, पल्लवी जी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है, एंड समाधान जी का तो हमने आपको ऑडियो नोट सुना ही दिया था, हमद जी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है, मोहम्मद अशफाक जी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया, लेकिन इन्होंने निबोड़ा निबोड़ा की जगह पता है क्या लिखा है, मोड़ा नी मोड़ा, मोड़ा नी मोड़ा, मतलब साउंड वही कर रहा है लेकिन स्पेलिंग इन्होंने बहुत गलत लिखी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं अपने एग्जाम में लिखा करती थी। थैंक यू सो मच जितने भी लोगों ने आंसर किया है, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमें आंसर करने के लिए। फिलहाल इसी बात पे आपको जो है बिल्लू मूवी से एक बहुत ही अमेजिंग डांस नंबर जिसमें शाहरुख खान जो है अमेजिंग डांस कर रहे हैं वो मैं आपको सुनाती हूँ, वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास, ये गाना एंजॉय करके आइए, उसके बाद एक अपडेट है आपके लिए, स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. टफ काम और भी आसान, कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ।
1: बैक फ्रॉम वेकेशन इन योर होम टाउन, तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर, सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में। ग्रोसरीज हो, फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स, सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर। तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल। नेस्टो हाइपरमार्केट, 152nd ब्रांच, नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, अलगराफा।
2: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है, क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास,
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
4: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
5: लुलू, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

ये इश्क को जो है ऐसे डिस्क्राइब कर रहे हैं जैसे हम बुखार को करते हैं कि मम्मी बुखार जैसा कुछ लग रहा है, मतलब पता नहीं क्या लग रहा है बट बुखार जैसा ही कुछ तो है। वेलकम टू 106.3 रेडियो ऑलवर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहां पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पांसिबिलिटी मैंने अपने इन नाजुक कंधों पर उठा रखी है। अब देखिए यार, मैंने जो है आप सबका आंसर जो है वो ऑन ईयर बोला, लेकिन एक हमारे लिसनर थे जिन्होंने बहुत पहले आंसर कर दिया था लेकिन मैं उनके मैसेज तक पहुंच ही नहीं पाई क्योंकि इतने सारे मैसेज आ गए थे। सो अब्दुल्ला जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, हम दिल दे चुके सनम सॉन्ग इज निबोड़ा निबोड़ा, एंड फिर इन्होंने मुझे एक क्राइंग इमोजी भेजा कि मैंने उनका नाम ऑन एयर नहीं लिया। सो अब्दुल्ला जी थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच रोज रोज जवाब देने के लिए एंड इतने प्यार से जो है मुझसे खफा होने के लिए कि यार आपने मेरा नाम नहीं लिया। मैं भी काश ऐसा कर सकती जब मेरा नाम जो है अच्छे चीज़ों में नहीं लिया जाता है, क्रेडिट में नहीं लिया जाता। ठीक है गाइस, कोई बात नहीं, अपना दुख कभी और जो है मैं आपके सामने रोऊंगी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी फिलहाल मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी हूँ। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ऑब्वियसली शाहरुख खान से जुड़ी हुई कोई भी बात मेरे लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है। सो बैड्स ऑफ बॉलीवुड का जो सीजन 2 है वो आने वाला है। आपने देखा होगा आर्यन खान ने जो है वो इसको डायरेक्ट किया था, शाहरुख खान एंड आधी बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है हमें इस सीरीज में देखने को मिली थी, एंड काफी सारे मेटा रेफरेंसेस भी हमें इस सीरीज में देखने को मिले थे। मतलब काफी सारे ऐसे बॉलीवुड की ऑलरेडी जो गॉसिप्स चल रही थी उनको इस सीरीज में डाला गया था। तो इस सीरीज का जो पार्ट 2 है वो आने की बात जो है वो जल्द ही चल रही है, शूट जल्द ही शुरू होने वाला है, एंड अरशद वारसी पक्का से हमें इसमें दिखने वाले हैं। सो अरशद वारसी का रोल एकदम होने ही वाला है इसमें, ये कंफर्मेशन आ गया, एंड शाहरुख खान भी हमें फिर से इसमें दिखने वाले हैं। तो देखो मैं और किसी चीज़ के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं सिर्फ जो है अरशद वारसी वापस दिखने वाले हैं इसके लिए एज गफूर, एंड सेकेंड जो है शाहरुख खान हमें फिर से देखने मिलेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है फादर जो सन डुओ है उसे देखना, मतलब आर्यन खान का डायरेक्शन हो एंड शाहरुख खान जो है उसमें एक्ट कर रहे हो, बस और क्या चाहिए, बेस्ट थिंग। एंड जो है अभी जल्द ही किंग मूवी जो है वो भी थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, तो मैं उसके लिए भी काफी एक्साइटेड हूँ। मैंने तो अभी से जो है सबको रील्स भेजनी शुरू कर दी है कि यू एंड मी दैट मंथ, यू एंड मी शाहरुख खान की मूवी ऑफ कोर्स, एंड मैं देखने जाऊंगी इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे। बाकी सुहाना खान एंड शाहरुख खान जो है वो हमें साथ में देखने को मिलने वाले हैं, तो बहुत मजा आने वाला है। फिलहाल ओनली फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर जो है आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, है जवानी तो इश्क होना है के टाइटल ट्रैक, वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय कीजिए। उसके बाद जरा आपके रेडियो सेट पर आएंगी कुछ अपडेट्स जो आपका जानना जरूरी है। मैं हूँ आपकी कशिश, मेरे साथ स्टे ट्यून रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: You are listening to Qatar's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindaas.
1: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
2: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर,
1: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
2: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिलें।
1: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: बैक फ्रॉम वेकेशन इन योर होम टाउन, तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर, सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में। ग्रोसरीज हो, फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स, सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर। तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल। नेस्टो हाइपरमार्केट, 152nd ब्रांच, नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस।

0: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में 7:10 दैट इज 7:10 स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास
1: हाय गाइस दिस इज वाणी भानुशाली
2: हे दिस इज लियाना डी क्रूज
3: दिस इज मी ऋतिक रोशन
4: हाय आई एम आलिया भट्ट
5: हाय मैं हूं विवेकानंद ओबेरॉय एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास
6: बातें नहीं एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ऑलिव पर जियो बिंदास
7: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
8: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

अगर आपसे भी आपके टूटे दिल की पीड़ जो है वो नहीं सही जा रही है और आप चाहते हैं कि कोई अच्छी लव स्टोरी जो है वो देख लें, तो मैं जो है आपको रिकमेंड करने के लिए आ चुकी हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि आरजे के प्रोफेशन के साथ मुझे मूवी रिकमेंडेशन जो है इसको भी अपने सीवीवी में जो है मेंशन करना चाहिए कि गाइज मैं जो है मूवी रिकमेंड भी करती हूँ पार्ट टाइम, क्योंकि इतनी सारी लिस्ट मैं अभी तक आपको मूवीज की बनाकर दे चुकी हूँ कि इतनी तो चैट जीपीटी भी नहीं बना के देता। मतलब वो आपसे चार सवाल पूछता है और फिर तब तक मूवी देखने का मूड जो है वो खत्म हो जाता है, लेकिन मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ। सो अगर आपका मूड जो है कोई हटके रोमांटिक मूवी देखने का है, सो एक सादी सिंपल सी लिस्ट जो है मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ। मतलब ये बहुत फैंसी बहुत बूजी मूवीज नहीं है, लेकिन ये मूवीज मतलब अच्छी लगती है। बस थोड़ी सी वो शाहरुख खान वाली जो रोमांटिक मूवीज है उनसे हटके है, मतलब कुछ कुछ होता है या मोहब्बतें या हम दिल दे चुके सनम, ये मूवीज जो है ये ज़्यादा ओवरली ड्रामेटिकली जो है वो रोमांटिक हो जाती है। लेकिन हम जो है आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी लिस्ट जिसमें बहुत प्यारी प्यारी रोमांटिक मूवीज़ हैं। सो सबसे पहले तो आई हेट लव स्टोरीज, यस मूवीज लव स्टोरीज मैं आपको जो है रिकमेंड कर रही हूँ, और मूवी का नाम ही आई हेट लव स्टोरीज है एंड सच में बहुत अच्छी है। सोनम कपूर एंड इमरान खान अमेजिंग पेयर एंड बहुत ही खूबसूरत मूवी है, एक बार जरूर से देखिएगा। उसके बाद ओके जानू इज ऑफकोर्स वेरी नाइस, एंड ऐसे ही और बहुत सारी बताऊंगी लेकिन थोड़ी सी देर में।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: बैक फ्रॉम वेकेशन इन योर होम टाउन, तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर, सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में। ग्रोसरीज हो, फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स, सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर। तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल। नेस्टो हाइपरमार्केट, 152nd ब्रांच नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस अलगराफा।
2: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग, जबरदस्त इवनिंग मेरे भाई, सिर्फ रेडियो ऑलिव पर जबरदस्त इवनिंग, जियो बिंदास,
3: जबरदस्त इवनिंग, जबरदस्त इवनिंग, मेक यू ड्राइव गोल्डन विद। बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
4: लुलू, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

ये गाना सुन के अचानक से स्कूल की याद आ जाती है, क्योंकि एक बार ना एनुअल फंक्शन में जब मैं आई थिंक किंडरगार्टन में थी, तब मैंने इस गाने पर जो है डांस किया था. एंड मुझे जैसे अभी तक स्टेप्स याद है, तो मैं जब ये गाना चल रहा था ना, तो मैं पीछे अभी बैकग्राउंड में ना माइक के पीछे डांस कर रही थी. अच्छा हुआ कोई खिड़की नहीं है, मैं बाहर का तो कुछ नहीं देख पाती, ठीक है वो लॉस अलग है, लेकिन अच्छा है ना अंदर का भी कोई नहीं देख पाता कि जो है मैं कैसे डांस कर रही हूँ यहाँ पर. वेलकम 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बेसिक बोरिंग इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखी है. अब देखिए अजान से पहले जो है मैं आपको बता रही थी कि ऐसी कौन कौन सी मूवीज हैं जो आप देख सकते हैं. थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि ऐसी कौन कौन सी मूवीज हैं जो आप देख सकते हैं अगर आपको थोड़ा हटके रोमांस देखना है तो. सो लिस्ट में आगे हम बढ़ते हैं. पहले मैंने आई हेट लव स्टोरीज, ओके जानू एंड शादी में जरूर आना की बात ऑलरेडी कर ली थी, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं हंसी तो फंसी, बरेली की बर्फी और प्यार इम्पॉसिबल की. हाँ प्यार इम्पॉसिबल आई नो, उसमें उदय चोपड़ा है एंड वो उतनी आप बोलेंगे ये क्या बात हुई, ये कौन सी मूवी है. एंड सच में एक बार देखिए आपको प्रियंका चोपड़ा के हेयर स्टाइल से और एक चाइल्ड आर्टिस्ट है उसमें, उससे एकदम ऐसे प्यार हो जाएगा. इतना ज़्यादा खूबसूरत मूवी जो है वो है. सो एक बार जाकर इन सारी मूवीज को रीवॉच कीजिए अगर आपने पहले देख ली है, एंड एक बार वॉच कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं देखी है. फिलहाल वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई से पर्दा गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास.

इट्स 2026 गर्ल, अगर इतनी बार आपको कहना पड़ रहा है ना कि कहो प्यार है, तो ट्रस्ट मी प्यार नहीं है आज के टाइम पे, वही प्यार है जो आपको दिखाया जाए। ये जो है दिल ही दिल में प्यार करने वाला टाइम अब जा चुका है। देखो वेलकम जी 106.3 रेडियो ओलिवर, मैं हूँ आपकी कसुजन, शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का यानी अमेजिंग बनाने की बीड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखी है। एंड हमने ना आपकी लाइफ को और ज्यादा हैप्पी बनाने का भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है। सो अगर आप कोई मैनेजर हैं या बिजनेस ओनर हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जो टीम है और आपकी वर्क प्लेस जो है उसमें हैप्पीनेस की एक यू नो वाइब आ जाए, सो हैप्पीनेस लाउंज लेकर जो है हम आ सकते हैं आपके ऑफिस में, हम यानी रेडियो ऑलिव की पूरी टीम, रेडियो ऑलिव के आरजेएस, एंड वहां पर बहुत सारे गेम्स, फन, फॉलिक, मस्ती, मजा जो है वो हम कर सकते हैं आपकी टीम के साथ, ताकि वो थोड़े से ना रीएनर्जाइज हो जाए, रिजुविनेट हो जाए एंड वापस जो है अपने काम पर ज्यादा फोकस कर पाए। देखो यार, एक खुश दिल से ही खुशी से काम हो सकता है, एंड ये मैं कह रही हूं, मैं अपने दिल का काम करती हूं, मतलब मुझे बचपन से ही आरजे बनना था एंड मैं वही काम कर रही हूं, एंड ऑफिस में जितना भी स्ट्रेस हो काम का, जब मैं ये काम करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज हम मस्ती करते रहते हैं। सो वही मस्ती जो है हम आपके ऑफिस में लाना चाहते हैं, आपको भी फन कराना चाहते हैं। सो 3311063 इज द नंबर, आप इस पे जो है मैसेज करिए, हैप्पीनेस लाउंज लिखिए एंड हम आपको जो है एक कॉल दे देंगे। फिलहाल एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, गाने का नाम नजर तेरी तूफान। देखिए क्या अलग लेवल पे जाके तारीफ करी है इन्होंने, तेरी नजर तूफान, बारिश वारिश नहीं अब सीधे तूफान है। तो ये वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए, मैं हूँ आपकी कसुज़।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटोई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।

अरे पिया जो है इनको नई नई मूवीज के जो है रिव्यू चाहिए। हाँ जी, मूवी का रिव्यू चाहिए कि नहीं चाहिए? वेलकम जी 106.3 रेडियो एलएफआर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जो है जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखिए यार, मैंने ना रिसेंटली देखी धमाल 4 एंड मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने नहीं देखी है मूवी, क्योंकि शुरू के 15 मिनट में ही मुझे ऐसा हो गया था कि यार ये नहीं देखी जा रही, इससे बढ़िया मैं कोई कार्टून मूवी देख लूंगी। आजकल एनिमे में, कार्टून में जो है ज्यादा अच्छे एनिमेशन किए जाते हैं धमाल 4 से। सो अगर आप थिएटर्स में या कहीं भी जब देख रहे हैं और आप इस उम्मीद से देख रहे हैं कि यार हमें तो वो जो पुरानी धमाल थी, क्लासिक कॉमेडी थी, वो वाला मैजिक जो है वो दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा। इंद्र कुमार जी ने जो है कुछ अलग ही बना दिया है। मतलब इसको, इस मूवी को देख के ना ऐसा लगता है कि बहुत थकान हो गई है, बहुत ज्यादा थक गई हूँ मैं। क्रिंज जोक्स हैं, बहुत बुरा CGI है। मतलब वेलकम टू द जंगल जो थी उसमें भी मैंने यही कहा था कि यार बहुत क्रिंज है, लेकिन फिर भी आप उसे देख सकते हो अगर आप दिमाग घर छोड़कर जाओ तो। ये वाली को तो आप दिमाग छोड़ के जाओ मत ही जाओ, ठीक है। वैसे फोर्सफुली डाली गई स्लैपस्टिक कॉमेडी है। बाकी क्रिटिक्स ने जो है इसे 1.5 और 2 स्टार्स दिए। मैं तो देखो, मैंने पूरी नहीं देखी तो मैं उतने भी नहीं दे सकती, लेकिन अगर आपको जो है देखनी है एक बार तो आप देखो, आपको क्या लगता है वो मुझे बताओ। बिकॉज वेलकम टू द जंगल तो शुरुआती जब आए थे उसके रिव्यूज़ तो सबने उसे बहुत बुरा कहा था, लेकिन फिर इवेंचुअली ऐसा हुआ कि यार चलो, ये जो इतना सीरियस आजकल सिनेमा बन रहा है उसके बीच में एक ब्रेन रॉट आ गई है, अच्छी बात है। सो बाद में उसके रिव्यूज अच्छे आने लग गए थे। सो क्या धमाल 4 आपको अच्छी लग रही है या आपको बाकी रिव्यूज सुनकर कैसा लगा अगर आपने देखी है तो मुझे प्लीज बताइएगा 3311063। पर फिलहाल कॉकटेल 2 मूवी से आ रहा है आपके रेडियो सेट पर एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना। सो वॉल्यूम बढ़ाकर इन्जॉय करो आपकी कशिश के साथ और कहते रहो जियो बिंदास।

0: कहंदी योयो हनी सिंह क्या बात है योयो हनी सिंह जी, अपना नाम फिट करना होता है तो कहीं भी फिट कर देंगे क्या? ये बिल्कुल वैसे ही है कि जो अब टीचर बोलती है कि बस आंसर शीट अब मुझे दे दो, और आपको तभी जो है एक वर्ड याद आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड है, एंड आप चाहते हो बस लिख दो, तो आप बस आंसर के बाद में वो एक वर्ड लिख देते हो ताकि टीचर को याद है, मतलब टीचर को समझ आ जाएगी आपको ये वर्ड याद था। वेलकम 106.3 रेडियो ऑल फॉर, मैं हूं आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूं जबरदस्त इवनिंग, जहां पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखी है। अब देखो यार, लोग ना अलग अलग चीजों का शौक रखते हैं, कुछ लोग कुकिंग करने का शौक रखते हैं, कुछ लोग पेंटिंग करने का शौक रखते हैं, कुछ डांसिंग का, कुछ सिंगिंग का, कुछ लोग जो है बुक्स पढ़ते हैं, कुछ लोग मूवीज देखते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ही अजीब टाइप का शौक होता है, एंड पता नहीं ये सारे लोग मेरे ही इंस्टाग्राम पे क्यों रहते हैं। सो मैंने जो है आज ये डिसाइड किया कि डिजिटल डिटॉक्स करते हैं, सो आज मैंने इंस्टाग्राम नहीं चलाया, एंड कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज देखने के लिए मुझे अचानक से अभी इंस्टाग्राम खोलना पड़ा। सो मैंने इंस्टाग्राम खोला पूरे दिन के बाद, मतलब पूरे दिन एज इन आई थिंक 10 घंटे बाद मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला, तो अचानक से सारी रील्स मतलब सारी की सारी रील्स बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस के आने लग गई। सो अगर आप वो इंसान है जो बिग बॉस देखते हैं तो प्लीज़ आप चले जाइए यहाँ से, क्योंकि मैं जो है जो अगर कुछ बोल दूंगी बिग बॉस के खिलाफ और आपको जो है वो अच्छा नहीं लगेगा फिर तो। वैसे सलमान खान जी वापस आ रहे हैं होस्ट करने के लिए बिग बॉस, हर साल ये कह देते हैं कि यार इस बार अब मेरा हो गया है, अब मैं बिग बॉस होस्ट नहीं करूंगा, और फिर आ जाते हैं होस्ट करने के लिए। ये बिल्कुल वैसे ही हमारे कलेशी रिलेटिव्स की तरह है ना, जो कहते हैं कि हाँ अब तो हम नहीं आएंगे आपके घर, लेकिन वो फिर आ जाते हैं और बोलते हैं ऐसी का तो फैमिली कहते हैं कुछ ज़्यादा बोल रही हूँ ना मैं, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मेरी रिश्तेदार भी ये शो सुनते हैं सब अपने ऊपर ले लेंगे कि हमारे बारे में आपकी बेटी रेडियो क्या क्या बोलती रहती है। सो आगे बढ़ते हैं, बिग बॉस जो है वो जल्दी शुरू होने वाला है, कंटेस्टेंट्स की लिस्ट जो है वो जारी हो चुकी है, काफी सारे स्पोर्ट्स पर्सन, काफी सारे अलग अलग सेलिब्रिटीज जो है वो उसमें शामिल हो चुके हैं, एंड लिस्ट एक बार आप जरूर इंटरनेट पे देखिएगा। क्या आपको ऐसा कोई है जिसे देख के बहुत मजा आ रहा है और हो रहा है कि ओ माय गॉड ये आया है, अब तो बिग बॉस इसी इंसान के लिए देखना पड़ेगा? मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। तो अगर आपको ऐसा लगा और आप बिग बॉस के फैन है तो एक बार बस बिग बॉस लिख के मुझे बता दो, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप बिग बॉस के फैन हो, और हो सकता है कि आपके चक्कर में मैं भी थोड़ी बहुत फैन बन जाऊं, थोड़ी कूल बन जाऊं। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर सुनने का वक्त हो गया है, वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ, मैं हूँ आपकी कशिश, ऑफ कोर्स आपकी कशिश हूँ मैं, एंड इंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास
1: रेडियो ऑलिव पर। आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है, कूल सॉन्ग।

0: टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटोई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास।
2: Zabardast evening. Make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores. Where the world comes to shop.

अलका याग्निक और उदित नारायण जी की आवाज में ये अमेजिंग वाला ट्रैक आपने एंजॉय किया। अब देखिए यार, पहले के गानों में ना ऐसा लगता था कि जैसे दो लोग सुर सुर में बात कर रहे हैं, मतलब बातचीत हो रही है, और आजकल जो है गाने सुन के ऐसा लगता है कि कोई डांट रहा है उस तरफ खड़े होके। जबरदस्त बनाने का जो बीड़ा है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैंने अपने इन नाजुक कंधों पर उठा रखी है। अब देखिए यार, मैं थोड़ी देर पहले ही बात कर रही थी रिश्तेदारों के बारे में, एंड अभी मम्मी पापा से भी बात करते हुए रिश्तेदारों की बात आ जाती है, फैमिली की बात आ जाती है। एंड कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जब आप घर पे होते हो तो आप ज्यादा गॉसिप्स जो है वो इंजॉय कर पाते हो, एंड ये जो छोटी मोटी गॉसिप है ये अक्सर फोन पे और वीडियो कॉल्स पे जो है वो अक्सर इग्नोर कर दी जाती है, आपको बताई नहीं जाती है। फिर आपको धीरे से रियलाइज होता है कि अरे अच्छा, बताया नहीं था क्या, ओहो बताना भूल गए थे। सो इससे ना आपको असल फोमो जो है वो महसूस होता है। मेजर मेजर बातें तो बता दी जाती है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें जो मिस कर दी जाती है उसका क्या। फिलहाल देखिए, मैंने जो है सलमान खान साहब को कंपेयर किया था हमारे यहाँ के रिश्तेदारों से, तो मुझे जो है एक मैसेज आया है, एंड ये कह रहे हैं कि गुड इवनिंग कशिश, आपको जो है इवनिंग में सुन के काफ़ी अच्छा लगा, एंड बिग बॉस तो मुझे पसंद नहीं है, थोड़ा ओवर रेटेड है, लेकिन आपने जो रिश्तेदारों को सलमान खान से कंपेयर किया है ये बढ़िया किया है। एंड इनके भी दो चार रिश्तेदार ऐसे हैं जो कहते तो हैं कि हम अब तुम्हारे घर नहीं आएंगे, लेकिन हर दो हफ्ते में घर पे आ जाते हैं। आई कैन रिलेट ब्रो, आई कैन रिलेट। और मैंने आपका नाम रेडियो पे इसीलिए नहीं लिया क्योंकि क्या पता आपके रिश्तेदार हमें सुन रहे हो और वो ऑफेंड हो जाए। क्योंकि देखो, मैंने तो रिस्क ले लिया है अपने रिश्तेदारों को ऑफेंड करने का, क्योंकि बाद में जब उनसे बात होती है तो मैं कह देती हूँ मेरा तो काम है, मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन आप तो ऐसा नहीं कह पाएंगे, है ना। सो फिलहाल वॉल्यूम बढ़ाकर एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ, और कहते रहिए जियो पिंदास। बचना है हसीनों से, के और शिल्पा राव की आवाज में, ये ट्रैक एंजॉय करिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ।
2: मिल्क, चीज, योगर्ट, लवली एग्स।
1: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस।
3: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ।
5: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
6: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: देखिए हो चुकी है रातें, अब जितनी भी बातें होंगी वो होंगी कल, क्योंकि मेरे यहाँ से जाने का आपको टाटा बाय बाय करने का वक्त आ गया है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश और आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे थे जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बीड़ा जो है वो मैंने अपनी नाजुक कंधों पे उठाया हुआ था, लेकिन अब मेरे जो कंधे हैं ये थक चुके हैं। आई होप आपको एंटरटेनमेंट का फुल ऑन डोज जो है वो मिल चुका है। फिलहाल मैं चलती हूँ, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखना, कल सेम टाइम पर हमारी मुलाकात होगी। बाकी अगर आपको मेरी याद सताए सो इंस्टाग्राम पर आप आ सकते हैं मुझे ढूंढते हुए, रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, बल्कि रेडियो ऑलिव के तो जाके सारे ही सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर लो। लिंक्डइन पे मिल जाएंगे हम आपको, आपको टिकटॉक पे मिल जाएंगे, स्नैपचैट पर मिल जाएंगे, जल्दी से जाकर सारे हैंडल्स को फॉलो कर लो, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग कॉन्टेंट आपसे मिस हो जाएगा अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो। और 3311063 इज आर व्हाट्सएप वाला नंबर, सो उस पर भी आप मैसेजेस ड्रॉप कर सकते हो, आपके दिल की कोई बात है तो वो शेयर कर सकते हो। हम फ्रीक्वेंटली ये मैसेजेस चेक करते रहते हैं, सो बिल्कुल मिस करते रहिए एंड अमेजिंग अमेजिंग गाने जो है वो इंजॉय करते रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी अब आपसे कल, सो स्टे ट्यून्ड रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।
1: Radio Olive Park. Fresh song of the hour. Yeah,

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम
1: बिंदास। ये है मिडनाइट लाउंज,
2: ये है मिडनाइट लाउंज।
0: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: ये है मिडनाइट लाउंज.
2: ये है मिडनाइट लाउंज.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: बिंदास ये है मिडनाइट लाउंज,
2: ये है मिडनाइट लाउंज.
3: From vacation in your hometown, तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं. अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर, सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में. ग्रोसरीज हो, फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स, सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर. तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल. नेस्टो हाइपरमार्केट, 152nd ब्रांच नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस अलगराफा.
0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन Radio Olive 106.3 FM.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: ये है मिडनाइट।

0: नाइट लाउंज,
1: ये है मिड नाइट लाउंज.
2: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM. जियो बिंदास.

0: ये है मिडनाइट लाउंज।
1: बैक फ्रॉम वेकेशन इन योर होम टाउन, तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर, सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में। ग्रोसरीज हो, फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स, सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर। तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल। नेस्टो हाइपरमार्केट, 152nd ब्रांच, नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, अलगराफा।

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम
3: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम

0: हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ओल्ड

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है.

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास